0: लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए सुनिए हरिहरन के स्वर में ये भक्ति गीत।

अभी आपने सुने संत कबीर के दोहे, स्वर रेणु सचदेवा का था। लीजिए अब सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति गीत।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती है सब क्या करके आए, देखो सब शिकायत करने आई है। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कहते थे मां मत सुनना सब झूठी, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया।

बाद में माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया।

क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया। मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाए। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया।

कोई असर नहीं माँ पर। अब कन्हैया ने माँ के खुशामद माँ की तारीफ शुरू की, माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। देखिए कन्हैया

0: इसी भक्ति गीत के साथ हमारा आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: स्वर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: नैतिकता के तीन आधार, कौन, कहां और क्यों। नैतिक मूल्यों की जीवन के लिए आवश्यक होने की चर्चा हुई। विचार आता है, क्या यह इतना आसान है? इसके लिए इस कसौटी पर कसें, कौन से नैतिक मूल्य, कहाँ के नैतिक मूल्य और नैतिक मूल्य क्यों कर। बात सही भी है, जिधर हम देखते हैं हमें नीति कम अनीति ज़्यादा दिखती है। शाला में बालक का एडमिशन कराना हो, ढेर सारा पैसा तथा सिफारिश, वह भी रिश्वत देकर। ट्रेन में स्लीपर चाहिए, रिश्वत दे दो, सीट खाली है। बाबू को रिश्वत दो, फाइल बढ़ गई, लोन मिल गया, कोटा पास हो गया। छोटे स्केल पर कार्य किया तो रिश्वत, और बड़े स्केल पर यदि हुआ तो घोटाला। यही तो है आज की नीति, नैतिकता कहाँ गई? रोजमर्रा के व्यवहार में धोखा देकर चीज बेचो, असली के नाम नकली बेचो, यही तो सर्वव्याप है। कौन है अछूता इससे? कहीं न कहीं इसका आश्रय तो लेना ही पड़ता है। अर्थात रोजिंदा व्यवहार में अनीति की उपयोगिता सिद्ध हुई और यही नीति बनते गई जो आज सर्वमान्य है। व्यवहार में ऐसा करते करते इसे ही नीतिगत मानकर धड़ल्ले से जीवन यापन का अंग बन गया है। यही समझना है कि धनिकों का जीवन कैसा और कितना धार्मिक होता है, यह तो भगवान ही जाने। व्यक्त रूप में वह नीति की ही बात करता है। चोर स्वयं अपने पुत्र को चोरी न करने की सीख देता है। अनीति ही नीति होती जा रही है। सद्विचार का लोप होकर अनैतिकता का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। धर्म के ये लुटेरे कितनी शान से जीते हैं। वह दिन कब आएगा जब गरीबों का, त्यागी ईमानदार जीवन का महत्व समझा सकेंगे? इसके हल के लिए क्यों न इस प्रश्न को सकारात्मक विचारें। सर्वप्रथम यह विचारें कि मैं कौन हूँ, तो स्वीकार करना होगा मैं उस सर्वशक्तिमान अंश का अंशी हूँ। द्वितीय कहाँ हूँ, तो उसे अपने संपूर्ण वर्तमान पर दृष्टिगत करना होगा कि वह इस संसार में एक जीव के रूप में गरीब, अमीर, सुखी, दुखी, गृहस्थ, साधु, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, संतरी, इन सब में से कुछ न कुछ तो है ही। इनके सभी के जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करें तो प्रतीति होगी कि सभी प्रतिस्पर्धा, विलासिता, भोग, दिखावे में ही जीवन जी रहे हैं। जिनके पास कम है अपने भाग्य को कोसते हैं और पाने के लिए प्रयत्नों में अनीति का परसेंटेज नित्य बढ़ाते ही जाते हैं। कैसे अपेक्षा करें कि जीवन नैतिक मूल्य आधारित हो जाए? तो फिर हमें तृतीय दृष्टि से विचारना होगा कि नैतिक मूल्य क्यों कर। क्या इससे आज का भौतिक जीवन जिया जा सकता है? यह संभव हो सकता है यदि अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें। साथ में यह भी विचारें कि यह जन्म किस लिए। जीवन भोग के लिए तो कदापि नहीं है। यह जन्म आत्मा के उत्कर्ष के लिए मिला है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि जो कुछ वर्तमान में भोग रहे हैं वह सब पूर्वजन्म आधारित है। वास्तव में तो सुखी कोई नहीं है। किसी को काहे का दुख है। जीने का लक्ष्य निर्धारित कर इस जन्म में ऐसा कुछ करें कि अगले जन्म में इससे बेहतर हो जाएं। परंतु जीव भी क्या करे, सदाचारी दुखी है और अनाचारी सुखी, और अनाचार करते देख सुखी है वह, इसका कुछ भी बिगड़ते नहीं दिखता। इसका कारण है पूर्व जन्म का उसका संचित कर्म, पुण्य योग से वह बचता चला जाता है। पुण्य क्षीण हुआ कि वह कहीं का नहीं रहता। इसलिए जीवन का उत्कर्ष हो, ऐसे जीना है। नैतिक होने में भले ही दुखी होने की प्रतीति हो, किंतु सत्कर्म सद्व्यवहार का आश्रय न छोड़ें। कर्म का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। नैतिक जीवन जिए, पुण्य योग अर्जित करें। जो कुछ करेंगे इस जीवन में और आने वाले जीवन में काम आएगा ही। वर्तमान का मोह न रखें, जीवन का यही आधार बन जाए तो नैतिकता जीवन के व्यवहार में आ जाएगी, जीवन आनंदमय हो जाएगा।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख और वाचक स्वर चंद्रहास दलाल का था। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं? ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

0: एम्बिएंट 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
1: किसान भाइयों राम राम। आज कृषि चर्चा में हम चर्चा करांगा गर्मी में फूलने की खेती का बारे में। गर्मी का मौसम में बढ़ेल तापमान और तेज धूप का बीच भी फूलने की खेती करी कर किसान भाई आर्थिक मुनाफा कमाई सकज। इना फूल को उत्पादन एक महीना बाद चीज होने लगज। न अभी गर्मी नम आवने वाला धार्मिक त्यौहार और मांगलिक कार्य नम इनकी मांग ज्यादा रज, तो इनका आप आसानी से बेची कर मुनाफा कमाई सकोज। किसान भाई होन फूल की खेती करनु सरल होना का साथ कम खर्चा वाले भी छे। साथ साथ एक ही खेती में रोग और कीड़ भी बहुत कम लगज। एक बार इनका लगाने का बाद आप 5 से 6 बार तक को उत्पादन ले सकोज। किसान भाइयों इना गर्मी का मौसम में आप नवरंगा गेंदा सूरजमुखी रजनीगंधा और सदाबहार जैसा फूल की खेती को चयन कर सकोज। किसान भाइयों अब बात करान फूल की खेती का लेन खेत की तैयारी और मिट्टी की, तो एक ही खेती का लेन अच्छा जल निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाए। जे का मिट्टी को पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। खेत की तैयारी का लेन खेत का 2 से 3 बार गहरी जुताई करी कर मिट्टी का भुरभुरो बनाई लेनु चाहिए। और बुआई से पहले खेत में सड़ेल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट पर्याप्त मात्रा में मिलाना चाहिए। किसान भाइयों जहाँ तक बुआई का तरीका की बात छे, तो अधिकतर फूल नकी जैसो कि नवरंगा और गेंदा का लेन पहले नर्सरी तैयार की जाए, फिर 20 से 25 दिन की तैयार पौध को खेत में रोपी दियो जाए। जहाँ क्यारी नम पौध से पौध को अंतराल 30 से 45 सेंटीमीटर को होज। किसान भाई होन गर्मी में फूल की खेती का लेन पानी की आवश्यकता ज्यादा होज, तो खेत में नमी बनाए रखना का लेन 7 से 10 दिन का अंतर से नियमित सिंचाई करनी चाहिए। गर्मी में पानी की बचत और पौधा की जड़ तक नमी पहुँचाना का लेन ड्रिप सिंचाई विधि को उपयोग करना चाहिए। किसान भाई होन पौधा नम तापमान को असर कम हो और पौध में पानी की कम मात्रा करें, आप पौधा न का आसपास सूखी घास या प्लास्टिक मल्च को भी प्रयोग कर सकोज। किसान भाइयों फूल की खेती में खाद और उर्वरक को प्रबंधन पौध की अच्छी बढ़वार का लेन जरूरी छे। एका लेन नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास को संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। एका साथ साथ समय समय पर जैविक तरल उर्वरक भी पौध न का देते रहना चाहिए। किसान भाइयों फूल की खेती में हम बात करा कीट और रोग की, तो एका में ज़्यादा कोई कीट या बीमारी तो नहीं होती, पर फफूंद लगना या जड़ सड़न को खतरो रज। तो पौधा न का फफूंद जनित रोग ने से बचावना का लेन कृषि विशेषज्ञ की सलाह से फंगीसाइड को उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों इन प्रकार से कृषि क्रिया करने का बाद 1 से 1.5 महीना में फूल की आवक शुरू हो जाए। इना फूल की तुड़ाई हमेशा सुबह जल्दी या शाम का समय करा। न तुड़ाई का तुरंत बाद फूल को पानी की बाल्टी या छायादार स्थान पर रखा, ताकि वो मुरझाए नहीं और बाजार में इनकी अच्छी कीमत मिली सके। किसान भाइयों इना प्रकार से फूल की खेती करने पर आप प्रति एकड़ 5 से 6 क्विंटल उपज प्राप्त कर सकोज। तो आज की कृषि चर्चा में गर्मी में फूल की खेती विषय पर बस इतरोज। राम राम।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। कृषि चर्चा का आज का विषय था गर्मी में फूलों की खेती। वाचक स्वर निरुपमा मिश्रा का था। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
2: निमाड़ की सुरीली धड़कन आप सुन रहे हैं FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए भेंट वार्ता, हुनर से आत्मनिर्भरता। जानकारी देंगी अंजलि शिंदे। सुबह 7:20 पर होगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा, और सुबह 8:15 पर सुनेगा निमाड़ी लोकगीत।

सुबह 9 बजे से 10 बजे तक राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे और सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

सुबह 10:35 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, कला के क्षेत्र में महिलाएं किस प्रकार आगे बढ़ें। जानकारी देंगी कला शिक्षिका श्वेता गीते।

सुबह 11 बजे से राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। शाम 5 बजे भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए जा रहे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

शाम 7:21 पर सुनेगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे से राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

हम आपको याद दिला दें, शाम 7:21 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता संरक्षित खेती। जानकारी देंगे डॉक्टर दीपक हरि रानड़े। आपसे बात की है वाणी महोदय ने।

0: रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।
1: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।

आज की ताज़ा खबर में प्रस्तुत है आज प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। रेलवे ने तलवड़िया स्टेशन को यात्रियों की सुविधा के लिए जंक्शन का दर्जा दिया है। इस स्टेशन का नाम अब तलवड़िया जंक्शन होगा। शहर में जल्दी लोगों को बदहाल सड़कों और गड्ढों से निजात मिलेगी। बारिश से पहले सड़कों का पेचवर्क और मरम्मत होगी। शहर की बदहाल 103 सड़कों की मरम्मत की जाएगी। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने वर्ष 2026-27 के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून 2026 तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। रक्तदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर जिला प्रशासन ने ओंकारेश्वर में रक्तदान करने वाले श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंग मंदिर में वीआईपी प्रोटोकॉल अनुसार निःशुल्क दर्शन करवाने की व्यवस्था की है।

अब कुछ खेल समाचार। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा नगर में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण आरोह का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में बच्चे कबड्डी, खो खो एवं कराटे की बारीकियां सीख रहे हैं। छुट्टियों में इन दिनों बच्चे मौज मस्ती के साथ ही अपनी प्रतिभा भी निखार रहे हैं। बच्चों के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 14 जगह खेल शिविर आयोजित किए गए हैं। यहां 1222 से ज़्यादा बच्चे सिविल लाइन स्थित निमाड़ क्लब में लॉन टेनिस, पुलिस लाइन में बास्केटबॉल और स्टेडियम में फुटबॉल सहित आत्मरक्षा के गुर सीख रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स ने 2022 सीजन के बाद पहली बार आईपीएल के अंतिम चार में जगह बना ली है। रविवार को मौजूदा सीजन के अपने आखिरी मैच में रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से शिकस्त दी। अब एक नज़र मौसम के हाल पर। नौतपा की शुरुआत सोमवार यानी कि आज से होगी। इस साल भी ज़्यादा तपन के बजाय बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि शुरुआती तीन दिन में तपिश तेज होगी, गर्म हवा एवं लू जैसे हालात बन सकते हैं। कल दिन का अधिकतम तापमान रहा 42.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान रहा 24.0 डिग्री सेल्सियस। ये थी आज प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। समाचार संकलन श्रुति श्रीवास का था।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए भेंटवार्ता, हुनर से आत्मनिर्भरता। जानकारी दे रहे हैं अंजलि शिंदे। श्रोताओं, भारत अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। जहाँ तक हम कला और संस्कृति की बात करते हैं तो भारत दुनिया के सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध देशों में से है, और हमारे देश का ये सौभाग्य रहा है कि यहाँ बहुत कुशल कारीगर रहे हैं। उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प को पूरी दुनिया में मशहूर किया है। कई ग्रामीण लोग आज भी कला की रचनात्मक वस्तुएं बनाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। तो आज हम ये जानने के लिए कि हस्तशिल्प से, हस्तकला से हम कैसे स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं, हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हस्तकला विशेषज्ञ एवं शिक्षिका श्रीमती अंजलि शिंदे मैडम को। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि जी हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद
0: जी। हमारे श्रोताओं को

0: हैं। तो आज हम ये जानने के लिए कि हस्तशिल्प से, हस्तकला से हम कैसे स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं, हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हस्तकला विशेषज्ञ एवं शिक्षिका श्रीमती अंजलि शिंदे मैडम को। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि जी हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद
0: जी। हमारे श्रोताओं को ये बताइए सबसे पहले तो हस्तकलाएं क्या होती है।
1: देखिए जैसे नाम में ही छुपा है, हाथ से बनाने वाली कलाएं, हाथों और सरल उपकरणों से विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं
0: जी।
1: ना, इसे जो मशीनों से नहीं बनते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से हाथ से बिना किसी मशीन की मदद से बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हस्तशिल्प कहा जाता है और ये जो कलाएं होती है वो हस्तकलाएं कहलाती हैं। तो वैसे ही देखिए हम जानते हैं कि रचनात्मकता का जो है वो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति और क्षमता के बल पर मनुष्य ने अनेक कलाओं को जन्म दिया है। इसमें से प्रत्येक कला की अपनी एक पृथक मौलिक विशेषताएं हैं।
0: हस्तकला के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं?
1: हस्तकला को दो भागों में हम विशेष तौर पर बांट सकते हैं। जैसे एक परंपरागत कलाएं जो परंपरा से परिवार में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है वो कलाएं, और वो सिर्फ वहाँ कला और अपने आनंद के लिए ही हम उसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरा ही वो जो अभी के समय में हम देखते हैं कि वो जो कलाएं थी वो व्यावसायिक रूप ग्रहण कर चुकी हैं और वो हस्तकलाओं से हमारा आर्थिक आधार भी बन रहा है। तो इस तरह से हम कला को दो भागों में बांट सकते हैं। जिस तरह से जो है कला के जो भाग ये जो हम परंपरागत और व्यवसायिक रूप में हम दो तरीके से कर सकते हैं। आपने जैसे पूछा था मुझसे कि हस्तकला को आप कितने तरह से बांट सकते हैं। हस्तकला के लिए साधन, बहुत सारे साधनों का हम उपयोग कर सकते हैं, उसी आधार पर हस्तकलाएं हैं। तो एक तो दो तरीके से, एक परंपरागत तरीका सा और एक आर्थिक आधार पर हम बांट सकते हैं। दूसरा हम उसकी साधनों के हिसाब से भी हम बांट सकते हैं। जैसे हस्तकला में हम उपयोग करते हैं बांस का, बेत का, जैसे धान की लकड़ी हुई, विभिन्न प्रकार की धातुएं हो जैसे मेटल है, पीतल, चांदी, चांदी से हम मीनाकारी करते हैं, तार कशी करते हैं, जूट का उपयोग करते हैं, मिट्टी, जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा कि जो कड़े बनते हैं हाथी दांत के कड़े होते हैं, तो वो उस तरह से शेल, जो सीपियां होती हैं समुद्र से निकली हुई, और शंख होते हैं उनसे भी बहुत सारे ज्वेलरी और सजावटी सामान बनता है, रॉक पत्थर जो संगमरमर होता है, लकड़ी, लकड़ी को भी बहुत तरीके से तराश के हम बहुत सारी साधन उपयोगी, मतलब घर के लिए सजावट के लिए भी चीजें बनाते हैं, ग्लास और लाख का भी उपयोग करते हैं, लाख से चूड़ियां ज्वेलरी बनाई जाती है, और इस तरह से कागज, कागज को भी विभिन्न तरीके से जैसे लुगदी बना के या मोल करके इस तरह से बहुत सारी हस्तकलाएं की जाती है। इसके अलावा बहुत, मतलब पहले से घरों घरों में हम लोग, हमारी महिलाएं बनाती आती थी, बुनाई और कढ़ाई का उपयोग होता था, चित्रकारी कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परंपरागत कलाएं हैं ये, और जो परंपरा से चली आ रही हैं, और वो जो परिवार है वो जो निश्चित रूप से वो जो वही कला का उपयोग वो वही पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते जाता और परिष्कृत होते जाती वो कलाएं, और वो इस तरह से हस्तकला हमारी समृद्ध, भारत की हस्तकला बहुत समृद्ध क्षेत्र है।
0: स्वरोजगार की अगर हम बात करें तो हस्तकला किस प्रकार से आजीविका का साधन हो सकती है?
1: हस्तकला हमारे लिए, ये पहले तो हम, मतलब था कि आनंद का ही क्षेत्र माना जाता था कि उससे हम कोई अर्निंग नहीं करते थे। जो परंपराएं समय समय पर जैसे त्यौहार है, रीति रिवाज हो रहे हैं, उस समय में वो चीज़ें हस्तकला का कुछ हम बनाते थे, कुछ घड़ते थे, कुछ चित्रकारी करते थे, और इस तरह से वो परंपराएं चल रही थी। लेकिन उसका उपयोग धीरे धीरे बाद में इससे आर्थिक आधार पर भी होने लगा इसका उपयोग, और अब तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हस्तकला से निर्मित सामान की बहुत डिमांड है, और इससे बहुत अच्छा हम आर्थिक आधार भी पे भी हम इससे संबल हो सकते हैं, और आजीविका का बहुत अच्छा साधन है। सरकार ने भी बहुत सारे विभाग और संस्थाएं शुरू किए हैं, और वो किए थे जो सरकार भी इसको, इसमें बहुत सारा, हर व्यक्ति को जो कलाकार है या फिर जो हस्तकला से के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं उनको बहुत सारा आर्थिक मजबूती देती हैं और प्रेरित कर रही हैं। बड़ी बड़ी वर्कशॉप होती है, NGOs भी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो कुल मिला के ये है कि हस्तकला जो है आजीविका के लिए बहुत बड़ा अच्छा क्षेत्र है हस्तकला
0: जी। तो हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना शुरू की गई है?
1: मैं तो जैसे एक शिक्षिका हूँ और एक बहुत सारे रोज हस्तकला के क्षेत्र में काम करती हूँ, बहुत सारी चीजें सीखती हूँ, तत्पर रहती हूँ सीखने के लिए और करती रहती हूँ, मेरा रुचि है। लेकिन मैं जानती हूँ, जैसे मैं जानकारी लेती हूँ, मैं जो हस्तकला करते हैं उनके लिए को भी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ। तो मैं जो देखती हूँ अन्य कई विभागों में भी या मीडिया में भी, तो बहुत सारी सरकार योजनाएं जैसे माटी कला केंद्र के हैं और बहुत सारे जो है वो काम हो रहे हैं, जूट का है।

0: के काम हो रहे हैं, तो जो सरकार की सहायता से संचालित हो रहे हैं।
1: जी जी, हस्तकला हमारे व्यक्तित्व विकास को कैसे प्रभावित करती है?
0: हस्तकला हमारे व्यक्तित्व विकास को बहुत हद तक प्रभावित करती है। यदि हम में कोई रचनात्मकता है और हम अगर बहुत अच्छे से कुछ रचनात्मक तरीके से कुछ बनाते हैं, तो वो हमारे व्यक्तित्व को बहुत ही बदल देती है। जिन भावनाओं और विचारों को शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते, हम उन्हें अक्सर कला के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, और यही अधिक प्रभावी हो जाता है। और इससे कला के माध्यम से हम आनंद और उमंग की अनुभूति भी हमें होती है, हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध कला करती है। तो अगर कला हमारे साथ है, तो हमारा जीवन वैसे ही बहुत सुखी, आनंदमय, संतुष्टिपूर्ण हो जाएगा। हमारा सौंदर्य बोध भी बढ़ता है ना, हम हर चीज में अपना सौंदर्य, हर प्रकृति में, हमारे आसपास में, हम हर चीज में सौंदर्य को देख पाते हैं। तो इसी तरह जब हमारी मन में ये इस तरह के जब होता है सब कुछ, तो हमारे पास जब समस्याएं आती है, तो हम उनका समाधान भी बहुत अच्छे से निश्चित तौर पे ढूंढ सकते हैं। मतलब हम समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर सकते और सुधार कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए जो है हस्तकला, ये बहुत ही मजबूत कड़ी है हमारे जीवन में।
1: जी, हस्तकला के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए और क्या शिक्षा में हस्तकला का महत्व है?
0: हस्तकला जो है परंपरागत है, इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित किया गया है। इस तरह से इसे हमें संरक्षित करने की भी जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो बच्चे हैं, हम लोग के समय से और अभी में हमने देखा कि जो बच्चे, मतलब हम लोगों के, हम बुनाई करते थे या कुछ क्रोशिया कर लेते थे या, तो वो बच्चे उससे सब दूर होते गए। इस तरह से ये चीजें जो है, जो कलात्मक चीजें हैं, ये सब थोड़ी सी छूट रही हैं। तो ये चीजों से भी अगर जुड़ के हम, मतलब पीछे को भी लेके आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा व्यक्तित्व विकास ज्यादा होगा। बूढ़े आड़े जो करते थे, हम उसे छोड़ते ना चले, हम उसको लेते हुए चले। तो इस तरह से हमको इसको संरक्षित तो करना ही है और परंपराओं को बनाए रखने की कोशिश करना था। जैसे कि अब जो कलाकार हैं, जो कुछ कलाकार जो कर रहे हैं इन कामों को, निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से या एनजीओ की तरफ से भी क्लासें या कुछ स्कूल गए कुछ कलाओं के लिए। लेकिन आप देखिए कि जिस बच्चे का जन्म उसी परिवार में हो रहा है, वहां जहाँ परंपरागत कलाएं चली आ रही है, वहां वो बच्चा उसको देखते हुए जब बड़ा होता है, तो वो ज्यादा परिष्कृत होगा, वो ज्यादा सीख पाएगा बनिस्पत किसी स्कूल में या जाके। तो वो सबसे अच्छी क्लास तो वो उसका परिवार ही, और मन की संतुष्टि के लिए, मन के आनंद के लिए अगर हम सीखते हैं या कुछ समय के लिए सीखते हैं, तो ये कोई, इससे कोई हमारा नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमें इससे फायदा ही होना है। तो ऐसी छोटी छोटी कलाएं सिखाने के लिए भी घर में भी परिवार में प्रेरित करें, उन्हें प्रोत्साहन दें। पाठ्यक्रमों में तो कला शिक्षा और के लिए जगह है ही, तो स्कूलों के स्तर पे भी कला शिक्षा को बहुत महत्व दिया जा रहा है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी अंजलि शिंदे जी आपने कि हस्तकला से हम स्वरोजगार भी प्राप्त करें और अपनी जो लुप्त प्राय कलाएं हैं जो भारत की, उसको भी हम जीवंत रख सकते हैं हस्तकला के माध्यम से। तो हमसे जुड़ने के लिए, हमें इतनी अच्छी जानकारी प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत भेंटवार्ता, हुनर से आत्मनिर्भरता। जानकारी दे रही थी श्रीमती अंजलि शिंदे। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश क्षेत्रीय समाचार अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। फाल्टा उपचुनाव में भाजपा के रिकॉर्ड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बंगाल की जनता का भाजपा पर अटूट भरोसा। गंगा दशहरा पर उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, मुख्यमंत्री चढ़ाएंगे 300 फीट की चुनरी। प्रदेश भर में जल संरक्षण का महाअभियान। और नौतपा के पहले ही दिन 44 जिलों में हीट वेव अलर्ट, 5 जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट, 28 मई तक नहीं मिलेगी राहत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इस समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री दिए जाएंगे, जबकि बाकी पुरस्कार दूसरे दौर में दिए जाएंगे। इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ये जीत पश्चिम बंगाल की जनता का भाजपा पर अटूट भरोसा दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ श्री मोदी ने कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। इस लेख में कंचनजंगा को सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना का रक्षक बताया गया है। इस साल सिक्किम अपने राज्य बनने के 91 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। गंगा दशहरा के मौके पर आज प्रदेश भर में कुएं, तालाब, बावड़िया और नहरों की सफाई के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। उज्जैन में 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मां शिप्रा को 300 फीट की चुनरी अर्पित करेंगे। अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 1.91 लाख से ज्यादा जल संरक्षण कार्य पूरे हो चुके हैं। इस पूरे अभियान के लिए सरकार ने 10,666 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 59% राशि खर्च भी हो चुकी है। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी मांगने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 25 मई यानी आज कर दी है। बोर्ड का कहना है कि छात्रों को पर्याप्त समय देने के लिए फैसला लिया गया है। वहीं पुनर्मूल्यांकन यानी रीचेकिंग के लिए आवेदन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के 12 दिन बाद कल भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भोपाल से आकाशवाणी संवाददाता मोहम्मद ताहिर।
1: भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले रविवार को दिल्ली एम्स की टीम ने ट्विशा की डेड बॉडी का दोबारा से पोस्टमार्टम किया था। भोपाल एम्स में करीब 3 घंटे तक ये प्रक्रिया चली थी। उसके बाद अंतिम यात्रा एम्स से शमशान घाट तक निकाली गई थी। गौरतलब है कि 12 मई की रात भोपाल के कटरा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्विशा शर्मा केस को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। ट्विशा के पति समर्थ को शनिवार को भोपाल जिला न्यायालय में पेश किया गया था, उसके बाद से ही वो 7 दिन की डिमांड पर है। आकाशवाणी भोपाल के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में गर्मी के बीच पेयजल संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी संबंधित विभागों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से बंद कर दी हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने और रोज पानी की उपलब्धता की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खनन के लिए 1500 करोड़ और पंचायतों को 55 करोड़ रूपये अलग से जारी किए हैं। इस बार अच्छी खबर में बात नीमच के किसानों की। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना का जमीनी असर क्या है, बता रहे हैं हमारे नीमच संवाददाता।

0: दिनेश प्रजापति।
1: नीमच जिले में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना किसानों के लिए नई रोशनी लेकर आई है। खेतों में लगाए जा रहे सोलर पंप अब किसानों की सिंचाई व्यवस्था को आसान बना रहे हैं। जिले में सैकड़ों किसान इस योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन चुके हैं।
2: राजेंद्र गोयल कार्यपालन यंत्री उज्जैन ने बताया कि
3: भारत सरकार द्वारा इसमें 30% का अनुदान दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा 60% का अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान कृषक ऋण के रूप में दिया जा रहा है। इस प्रकार किसान को 90% के अनुदान में सोलर पंप की योजना का लाभ मिल रहा है। किसान को मात्र 10% की राशि ही इस योजना के तहत देना होता है।
1: सोलर ऊर्जा से लाभान्वित किसान गोविंद पाटीदार का कहना है,
4: किसी भी मौसम में कोई समस्या नहीं, बारिश हो, धूप हो, छांव हो, हर समय सोलर अपने को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाता है। फसलों को पानी मिल जाता है तो उस उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए नीमच से मैं दिनेश प्रजापति।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को शुरू होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के वैश्विक सम्मेलन में पहुंचे। यहां श्री श्री रविशंकर का 70वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। दूसरी ओर डॉ. यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पास बाघ के हमले में फूलबाई की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतका के परिजनों को 25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता और घायलों के मुफ्त इलाज के निर्देश दिए हैं। जबलपुर पुणे और जबलपुर बांद्रा साप्ताहिक ट्रेनों को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के लंबे संघर्ष और प्रयासों का नतीजा है। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि का कहना है कि इससे छात्रों, मरीजों और आम यात्रियों को सुविधा मिलेगी। प्रदेश में 3 दिन चली ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना कल पूरी हुई। इस बार पूरे प्रदेश में 10,742 गिद्ध गिने गए, जो पिछले साल से करीब 1200 ज्यादा हैं। और अब बात मौसम की। आज से नौतपा शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज 44 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जबकि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। नौतपा से एक दिन पहले ही खजुराहो और नौगांव में पारा 45.8 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई तक पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का यही हाल बने रहने का अनुमान है। आईपीएल के आखिरी लीग मैच में कल दो बड़े नतीजे सामने आए। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया, जिसमें कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच रहे। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से मात देकर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल जबलपुर दौरे पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में बच्चों के साथ पौधे लगाए। धार जिले के ग्राम बिंजकुआ में नदी किनारे झाड़ियों में मादा तेंदुआ का शावक मिला है। वन विभाग ने सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर इसे इलाज के लिए भोपाल के वन विहार भेज दिया है। खंडवा के नीरज पटेल ने एशियन अंडर 23 ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप के 55 किलो वर्ग में कांस्य पदक सीता। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज आगर मालवा में मोती सागर तालाब के गहरीकरण और सफाई कार्य में भाग लेंगे। बैतूल में गंगा दशमी पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्वालियर में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए आज व्यापक कार्यक्रम होंगे। इंदौर में बुजुर्गों की समस्याओं के निराकरण के लिए आज कलेक्ट्रेट में विशेष शिविर लगेगा। शिवपुरी में डाक विभाग आज और कल विशेष महा आधार अभियान चलाएगा। डिंडौरी जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में ही रैन बसेरा बनाया जाएगा। बालाघाट के मोती तालाब उद्यान में भीषण गर्मी के बीच कल 12 चमगादड़ मृत पाए गए। वन विभाग ने शव को जांच के लिए भेज दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा। प्रस्तुति दीपमाला शिंदे और श्वेता सोनी की है।

0: नई सुबह, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा में। आपके साथ मैं हूँ दीपमाला
1: और मैं हूँ श्वेता।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार,
1: सुप्रभात
0: और गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
3: गुड मॉर्निंग खंडवा।
0: श्वेता, आज की यह सुबह कुछ खास है क्योंकि हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों का उत्सव। 9 दशकों से रेडियो ने देश की धड़कनों को अपनी आवाज़ दी है।

0: रेडियो एक ऐसा साथी जो कभी खेतों की मेड़ों पर सुनाई दिया, कभी चौपालों में गूंजा, तो कभी घर के आंगन में मुस्कान बनकर बिखरा।
1: समाचार, संगीत, ज्ञान और मनोरंजन का यह सफर 90 वर्ष पूरे कर चुका है, लेकिन श्रोताओं के दिलों से इसका रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है।

0: श्वेता, मई महीने का यह आखिरी सप्ताह अपने साथ कई रंग लेकर आया है। एक ओर नवतपा की तपिश अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर हर किसी की निगाहें आसमान पर टिकी है कि कब मानसून की पहली फुहार धरती को भिगोए।
1: बिल्कुल दीपमाला, सही कहा तुमने। गर्म हवाओं के बीच भी उम्मीदों का मौसम जारी है। खेतों में किसान बारिश की राह देख रहे हैं, बच्चे छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं और सुबह सुबह मंदिर, मस्जिद और पूजा स्थलों में श्रद्धा की मधुर ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं।
0: श्वेता, इस सप्ताह के कुछ खास अवसरों की बात करें तो इस सप्ताह हमारी संस्कृति, आस्था और परंपराओं को और भी समृद्ध बनाने वाले दो महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाएंगे। सबसे पहले बात आने वाली 26 मई को मनाए जाने वाले पर्व गंगा दशहरा की।

ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला यह पर्व माँ गंगा की धरती पर अवतरण का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा स्वर्ग से भगवान शिव की जटाओं में उतरी और पृथ्वी पर अवतरित हुई।

0: वहीं अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो माँ गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर, जिसे गोमुख भी कहते हैं और जहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, वहाँ से माना जाता है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण धारा अलकनंदा है, जो बद्रीनाथ क्षेत्र के पास हिमालयी ग्लेशियर से निकलती है।
1: अलकनंदा नदी अपने मार्ग में धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी नदियों को समेटती चलती है और फिर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है और यहीं से इस नदी का नाम गंगा हो जाता है।
0: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माँ गंगा का इस पावन धरा पर अवतरण हुआ था। स्वर्ग की इस नदी रूपी देवी को क्यों इस धरा पर अवतरण लेना पड़ा, इस बारे में हमें और अधिक जानकारी दे रहे हैं पंडित विजय शास्त्री।
2: हर हर गंगे, घर घर गंगे। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, जिसे हम गंगा दशमी कहते हैं, और आज गंगा जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। वैसे गंगा कौन है? गंगा जो है वो भगवान नारायण के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जब भगवान वामन बनकर के राजा बलि के द्वार पर पहुँचे और तीन पग पृथ्वी मांगी, भगवान ने एक चरण नीचे बढ़ाया तो सात लोक नीचे के नाप दिए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। और भगवान ने जब एक चरण ऊपर बढ़ाया तो सात लोक ऊपर के नाप दिए, भू, भुव, स्व, मह, जनह, तपह, सत्य। और सत्यलोक को भी पार कर गए, ब्रह्मांड कटा में छिद्र हुआ और उस ब्रह्मांड कटा से जल गिरने लगा भगवान नारायण के चरण कमलों पर, और उसी जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण कर लिया और वही जल गंगा जी का जल कहलाया। और इन्हीं गंगा का जन्म हिमालय राज के यहाँ हुआ। गंगा जो है वो पार्वती जी की बड़ी बहन कही जाती हैं। इधर जब देवऋषि नारद आए और माता पार्वती को शंकर का तप करने का कह के गए पति रूप में पाने के लिए, और यही बात गंगा को भी पता चल गई, गंगा ने भी भगवान महादेव को पति रूप में पाने के लिए तप करना आरंभ कर दिया। पर माता पार्वती को पता चला कि गंगा भी शंकर को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हैं, तब तो माता पार्वती के मन में द्वेष भावना जाग गई। माता पार्वती अपनी सखियों के संग बैठी थी और तभी जोर जोर से कह रही हैं गंगा को सुना करके, सखियों, मैंने ऐसा सुना है कि किसी महात्मा के ऊपर यदि एक लोटा जल डाल दिया जाए तो वो महात्मा उसे अपनी इच्छानुसार वर दे देते हैं। अब यह बात माता गंगा ने सुन ली, मन में विचार किया कि मैं किसी महात्मा के ऊपर एक लोटा जल डाल दूंगी और वो प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं उनसे भगवान महादेव को मांग लूंगी। दुर्वासा ऋषि निकल करके जा रहे थे, माता गंगा ने एक लोटा जल दुर्वासा ऋषि के ऊपर डाल दिया। तब तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, कहा, गंगा तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होने के बाद भी मेरा अपमान किया है, मेरे ऊपर जल डाला है, जहाँ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी पृथ्वी पर जल के रूप में बहेगी। तब तो गंगा चरणों में गिर गई, महात्मन, मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करो, और मैं तो भगवान महादेव को पति रूप में पाने के लिए आपके ऊपर ये जल डाला है। तब तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, देवी, अब श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, तुम इस पृथ्वी पर जल के रूप में बहोगी, पर इससे पहले तुम शंकर की जटाओं में धारण होगी। जब दुर्वासा ऋषि श्राप दे करके चले गए तब इधर माता गंगा को बड़ा क्रोध आया, पार्वती के ऊपर श्राप देने के लिए तैयार हो गई पार्वती को। तभी भगवान महादेव प्रकट हो गए और महादेव ने प्रकट होकर के आज गंगा से कहा, गंगा, ये पार्वती मेरी अर्धांगनी बनने वाली है और यदि तुमने इसे श्राप दे दिया तो मैं इससे विवाह नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम इसे श्राप मत दो। इधर माता पार्वती को भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने मेरी बड़ी बहन को श्राप दिला दिया। तब भगवान महादेव से कहा, प्रभु, मेरे से जो अपराध हुआ है इसका प्रायश्चित क्या होगा? तब भगवान महादेव ने कहा कि देवी, तुमसे जो अपराध हुआ है इसका प्रायश्चित जब पहली बार गंगा इस पृथ्वी पर जल के रूप में बहे तो पहली डुबकी सबसे पहले तुम लगा लेना और हर हर गंगे कह देना, तो तुम्हारे जितने भी पाप किए हैं वे सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। आज भी हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि गंगा में जब गोता लगाया जाता है तो हर हर गंगे कहा जाता है। हर हर गंगे कह के गोता लगाने से जीव के तापत्रयो मूलनम, तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाया करते हैं। सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है, रेवा तीरे तपः पुण्यम मरणम जाह्नवी तटे, रेवा के तट पर पुण्य करने का ज्यादा विधान है पर मरे हुए आदमी का उद्धार गंगा तट पर होता है। सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है कि जब तक हमारे पूर्वजों की हड्डियां गंगा जल में रहती है तब तक वे हमारे पूर्वज स्वर्ग का सुख भोगते हैं। और इस पृथ्वी पर गंगा को भागीरथ जी लेकर के आए, सगर के 60,000 बेटा जल करके भस्म हुए कपिल ऋषि के श्राप के द्वारा। तब भागीरथ जी ने कई वर्षों तक माता गंगा की तपस्या करी। माता गंगा

प्रसन्न हुई, कहा मांगो क्या चाहिए। भागीरथ जी ने कहा मैया आप पृथ्वी पर चलो और मेरे पूर्वजों का उद्धार करो। माता गंगा ने कहा कि राजन मैं आपके साथ पृथ्वी पर चलने के लिए तो तैयार हूँ, पर मैं यदि इस सत्यलोक से नीचे गिरूंगी पृथ्वी पर तो सुतल लोक पहुँच जाऊँगी, इसलिए तुम मेरे वेग को धारण करने के लिए भगवान महादेव का तप करो। भागीरथ जी ने तप किया है महादेव का, और महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और भागीरथ जी उस गंगा को लेकर के आए। उस गंगा को जब लेकर के आए और अपने पूर्वजों का जैसे ही उस गंगा से स्पर्श हुआ, वे सारे के सारे पूर्वज दिव्य रूप धारण करके भगवान के दिव्य धाम को चले गए। गंगल फणे पुण्या गंगे महागंगे शंकर प्राणवल्लभे महति तुम ऋषि देशे भागीरथी नमोस्तुते। आज गंगा दशमी के पर्व पर गंगा जी का नाम जपने से, गंगा स्नान करने से जीव के सारे पाप संताप धुल जाया करते हैं। हर हर गंगे, घर घर गंगे।

0: लोक मान्यता है कि नौतपा जितना प्रभावी होता है मानसून उतना ही अच्छा माना जाता है।
1: नवतपा का अर्थ है 9 दिनों का तप। यह वह समय होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और गर्मी अपने चरम पर होती है।
0: सूर्यदेव इन 9 दिनों में पृथ्वी को तपाते हैं ताकि प्रकृति वर्षा ऋतु के लिए तैयार हो सके।
1: लोक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यदि नव तपा के पूरे 9 दिन अच्छी तरह तप जाएं तो प्रकृति का संतुलन बेहतर रहता है और वर्षा भी अच्छी होती है।
0: और दीपमाला इन 9 दिनों के दौरान होने वाली तपिश से चूहे, टिड्डे और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे कीट पतंगों का प्रकोप भी कम हो जाता है।
1: हाँ श्वेता, इन दिनों की तपन से सांप, बिच्छू और अन्य विषैले जीव जंतुओं की संख्या भी नियंत्रित होती है, साथ ही रोग फैलाने वाले कीट मच्छरों के प्रकोप से भी राहत मिलती है। इसलिए तो कहा जाता है, नौ तपा तपे तो धरती हंसे, किसान के चेहरे पर खुशियाँ बरसे।

0: श्वेता, इस सप्ताह के महत्वपूर्ण पर्वों में ईद उल अजहा का पर्व भी शामिल है। यह त्याग, समर्पण, करुणा और मानवता का संदेश देने वाला पर्व है।
1: यह त्यौहार हमें आपसी भाईचारे, प्रेम और जरूरतमंदों की सहायता करने की प्रेरणा देता है और विविधता में एकता की हमारी भारतीय संस्कृति ऐसे ही पर्वों से और भी मजबूत होती है।
0: हाँ श्वेता, आने वाली 28 मई को ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाएगा। इस बारे में हमें और अधिक जानकारी दे रहे हैं आलिम आमीन खान।
2: कुर्बानी एक ऐसा त्यौहार है और धर्म का एक ऐसा अनूठा हिस्सा, जिसे हम और आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मजहब पाए जाते हैं, जितने भी धर्म पाए, किसी न किसी रूप के अंदर कुर्बानी पेश की जाती है। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु सलाम से भी पहले हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातु सलाम से चालू हुई और ये कुर्बानी का वाक़या बड़ा दिलचस्प है कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातु सलाम के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह तबारक तआला ने उनके यहाँ पर करम फरमाया और उन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु सलाम के यहाँ पर हज़रत इस्माईल का जन्म हुआ। जब हज़रत इस्माईल पैदा हुए तो उसके चंद दिनों के बाद में अल्लाह तबारक तआला के आप नबी थे, आपको हुक्म हुआ कि इन्हें इस

जगह पर छोड़ करके आया जाए जहाँ पर आबो पानी कुछ भी ना हो। लिहाजा अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए हज़रत इब्राहिम ने अपनी बीवी और अपने छोटे बेटे इस्माइल को उस जगह पर छोड़ा जहाँ पर आज मक्का शहर विकसित है और बसा हुआ है, जहाँ पूरी दुनिया के लोग मुसलमान जा करके हज के अरकान अदा करते हैं। लिहाजा जब वहाँ पर पहुँचे और इन्हें छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद में कई दिनों के बाद आपको फिर यह हुक्म होता है कि अपने बेटे की कुर्बानी राह खुदा में पेश करो। आपको मुसलसल आता है यहाँ तक कि आप फिर अपना पुख्ता इरादा कर लेते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ही की जानिब से हुक्म है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल के पास में पहुँचते हैं और फिर अपनी बीवी से भी मुलाकात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मुझे इस तरीके से ख्वाब आया है। आपकी बीवी ने और आपके बेटे ने इस बात पर रजामंदी का इज़हार किया कि अगर ये अल्लाह तबारक तआला की जानिब से हुक्म है तो हम भी इस पर अमल करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर हज़रत इब्राहिम ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी देना चाही। हज़रत इस्माइल के हाथ पैर बांध करके और आपके गले पर जब छुरी चलाई गई तो कुरान बयान करता है, मुताद अहदीस पाक के अंदर इस रिवायत को बयान किया गया है कि हज़रत इब्राहिम ने जिस वक्त हज़रत इस्माइल के गले पर छुरी चलाई तो छुरी नहीं चली और हुक्म हुआ कि इस्माइल की जगह एक जन्नती मेंढा जिसे हम और आप दुम्बा कहते हैं ला करके पेश किया जाए। लिहाजा फ़ौरन उनकी जगह पर दुम्बा रखा गया और हज़रत इब्राहिम ने जब छुरी चलाई तो दुम्बा ज़बह हुआ और उसी की याद में पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि आप जो है इसी सुन्नत पर अमल करते हुए कुर्बानी करें। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाते हैं और अल्लाह तबारक तआला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी पेश की जाती है। साथ ही साथ इस्लाम का एक कानून है कि जब भी कोई त्यौहार हो, फेस्टिवल हो, खुशी का माहौल हो तो गरीबों का ध्यान रखा जाए, यतीमों का ख्याल रखा जाए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा जाए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए। लिहाजा बहुत से लोग जो अपने कभी रिश्तेदारों को इनवाइट नहीं कर पाते और गरीबों का ख्याल नहीं रख पाते, यतीमों के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाते, मगर जब ये त्यौहार आते हैं तो मुसलमान एक दूसरे का ताउन करता है, मदद करता है, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करता है। लिहाजा इस मौके पर मुसलमान आपस में एक दूसरे की दावतें करते हैं और खाने का अहतमाम रखा जाता है। और दर हकीकत ये कुर्बानी सिर्फ एक जानवर ही की नहीं होती बल्कि कुर्बानी का मतलब ये है कि इंसान अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़ दे और अपना हर काम अपने रब तबारक तआला की रज़ा के लिए करे कि हमें अल्लाह को राज़ी करना है, हमें अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना है। लिहाजा उसकी राह में जो भी चीज़ और हमसे ज़्यादा हमें ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा अजीज़ है उसकी कुर्बानी हमें रब की राह में पेश करनी है, चाहे वो माल की शक्ल में हो, चाहे वो औलाद की शक्ल में हो, चाहे वो अपनी ही शक्ल में क्यों ना हो। लिहाजा ये कुर्बानी का त्यौहार इसार का त्यौहार है, मोहब्बत आम करने का त्यौहार है, अल्लाह तबारक तआला की रज़ा हासिल करने का त्यौहार है, अल्लाह तबारक तआला का क़ुर्ब हासिल करने का त्यौहार है। हम और आप देखें बहुत से लोग कुर्बानियाँ अपनी पेश कर रहे हैं, लिहाजा उनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप इस सुन्नत इब्राहिम को अच्छे अंदाज में अहसन तरीके से पेश करें और हुकूमत की गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपनी कुर्बानियाँ अदा करें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, गंदगी से बचें कि इस्लाम वो मज़हब है कि जिसके बानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्तहुरु शतरुल ईमान, कि साफ़ सफाई ईमान का जुज़ है, हिस्सा है। लिहाजा हमें और आपको भी साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, हमसे किसी को तकलीफ़ ना हो इसका बेहतर से बेहतर अंदाज में ख्याल रखना चाहिए और हम हर त्यौहार मिलजुल करके मनाएं। हम यही दुआ करते हैं हम और आप एक दूसरे के साथ में मोहब्बत से पेश आए, इखलास के साथ में पेश आए। हज के अरकान भी अदा किए जाते हैं कि पूरी दुनिया से मुसलमान इकट्ठा होकर के शहर मक्कतुल मुकर्रमा में हाजिर हैं और अपने हज के अरकान अदा कर रहे हैं। ये हज के अरकान भी हज़रत इब्राहिम जो हम हज करते हैं, यह हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनाया हुआ वो मकान है जिसका तवाफ़ किया जाता है, जिसके फेरे लगाए जाते हैं और उसके बाद में सफ़ा और मरवा की एक पहाड़ी है जहाँ पर दौड़ लगाई जाती है और साथ ही साथ मीना और मुजदलफा और अरफात के बड़े वसीउ मैदान हैं जहाँ पर मुसलमान जाकर के इबादतें करते हैं, अपने लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआएं की जाती है और इंसान की फलाह व बहबूद के लिए वहाँ पर जो है रब की बारगाह में रोया जाता है, गिर गाया जाता है और अमन शांति की दुआ की जाती है।

जाती है। पूरी दुनिया से लोग हज के लिए भी गए हुए हैं और अपने हज के अरकान भी अदा कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ भी पेश कर रहे हैं, रब की इबादतें भी कर रहे हैं। कुर्बानी के ताल्लुक से एक अजीम रिवायत और बड़ी ही प्यारी बात हमें मिलती है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा था, या रसूलल्लाह यह कुर्बानी क्या है? तो उन्होंने इरशाद फरमाया था कि कुर्बानी ये तुम्हारे इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस सुन्नत को जिंदा रखें और मिलजुल करके इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें।

0: दीपमाला कहते हैं कि सेहत ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि तन स्वस्थ हो तो मन प्रसन्न रहता है और जीवन की चुनौतियां भी आसान लगने लगती है।
1: हाँ श्वेता, आज के भागदौड़ भरे जीवन में अगर हम 20 से 30 मिनट का समय भी व्यायाम को देते हैं तो यह हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। सुबह की ताजी हवा में टहलना, योग करना, साइकिल चलाना और हल्का फुल्का व्यायाम न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाता है बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर हमसे चर्चा कर रहे हैं शिक्षक सौरभ बारचे।
2: दोस्तों, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इसके लिए व्यायाम से बेहतर और कुछ नहीं। हम सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में व्यायाम का महत्व कितना है, लेकिन हम यह नहीं जानते होंगे कि व्यायाम हमारे लिए क्यों या क्या कर सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे पूर्वज खानाबदोश थे। वह अपना सारा समय भोजन और आश्रय की तलाश में इधर उधर घूमने और दैनिक आधार पर एक लंबी दूरी तय करने में बिताते थे। हमारा शरीर नियमित रूप से सक्रिय रहने के लिए बनाया गया है और विकसित हुआ है, इसलिए हमारे शरीर के लिए व्यायाम का महत्व और बढ़ जाता है। व्यायाम में शारीरिक गतिविधि में शामिल होना और आराम के स्तर से परे हृदय की गति को बढ़ाना शामिल है। व्यायाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है। चाहे लोग हल्के व्यायाम में संलग्न हों जैसे कि टहलने जाना या उच्च तीव्रता वाली गतिविधियां, उदाहरण के लिए चढ़ाई पर साइकिल चलाना या वजन प्रशिक्षण, ऐसे नियमित व्यायाम शरीर और दिमाग के लिए व्यापक लाभ प्रदान करता है। कई प्रकार की बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए हर दिन किसी भी तीव्रता के व्यायाम में भाग लेना आवश्यक है। उचित स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए व्यायाम करना सबसे जरूरी है। इसके अलावा यह जीवन के हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है। खास तौर पर आज के युवाओं को पहले से कहीं ज़्यादा व्यायाम करने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे प्रतिदिन जो जंक फूड खाते हैं वह उनके जीवन की गुणवत्ता में बाधा डाल सकता है, इसलिए हमारे जीवन में व्यायाम का महत्व और बढ़ जाता है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप सुखी जीवन नहीं जी सकते और समाज के विस्तार में योगदान नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए व्यायाम करने की आवश्यकता है, लेकिन यह सिर्फ युवाओं के बारे में नहीं बल्कि समाज के हर सदस्य के बारे में है। आजकल कॉलेज में शारीरिक गतिविधियां अक्सर होने लगती है। शारीरिक व्यायाम के आयोजन के लिए पेशेवर को परिसर में बुलाया जाता है। इस प्रकार यह उन सभी के लिए एक महान अवसर है जो इसे करना चाहते हैं। जिस तरह कॉलेज के बच्चों के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी तरह ऑफिस में काम करने वालों के लिए भी यह जरूरी है। डेस्क जॉब के लिए व्यक्ति को बिना ब्रेक के लंबे समय तक डेस्क पर बैठना पड़ता है। उन्हें सीमित मात्रा में व्यायाम मिलता है क्योंकि वे सारा दिन बस बैठे रहते हैं और फिर घर वापस आकर सो जाते हैं। यह बहुत ही अस्वास्थ्यकर जीवन शैली को जन्म देता है। यही कारण है कि आजकल स्कूल कॉलेज के साथ कार्यस्थलों पर भी व्यायाम का महत्व बताया जाता है। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है, जिससे किसी भी हानिकारक बीमारी से बचा जा सकता है। व्यायाम के अनेक लाभ हैं, जैसे व्यायाम ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेहतर काम करता है, तो सब कुछ आसान लगता है और जीवन में मौज मस्ती के लिए आपके पास अधिक ऊर्जा होती है। व्यायाम मांसपेशियों की ताकत में सुधार करता है। सक्रिय रहने से मांसपेशियाँ मजबूत रहती है और जोड़, टेंडन और लिगामेंट्स लचीले रहते हैं, जिससे आप अधिक आसानी से चल सकते हैं और चोट से बच सकते हैं। व्यायाम व्यक्ति का वजन संतुलित बनाए

में मदद कर सकता है। आप जितना अधिक व्यायाम करेंगे उतनी अधिक कैलोरी बर्न करेंगे। इसके अलावा आप जितनी अधिक मांसपेशियों विकसित करते हैं आपकी चयापचय दर उतनी ही अधिक हो जाती है। इसलिए जब आप व्यायाम नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप अधिक कैलोरी जलाते हैं। व्यायाम से मस्तिष्क की कार्यक्षमता में भी सुधार होता है। व्यायाम एकाग्रता के स्तर को बढ़ाता है और संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाता है और अल्जाइमर जैसे रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। व्यायाम दिल के लिए भी अच्छा है। व्यायाम LDL अर्थात बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसलिए यह आपके दिल पर तनाव कम करता है। व्यायाम Type 2 डायबिटीज़ के विकास के जोखिम को कम करता है। नियमित व्यायाम ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में भी मदद करता है जो Type 2 डायबिटीज़ की शुरुआत को रोकने या देरी करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त व्यायाम मोटापे को रोकने में मदद करता है जो Type 2 डायबिटीज़ के विकास में एक प्राथमिक कारक है। व्यायाम के बारे में हमने कई बातें देखी किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कितना व्यायाम करना चाहिए। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए 19 से 64 वर्ष के वयस्कों को प्रतिदिन व्यायाम करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यायाम के 2 से 4 सेट वयस्कों को ताकत और शक्ति में सुधार करने में मदद करेंगे। प्रत्येक व्यायाम के लिए 8 से 12 दोहराव शक्ति और ताकत में सुधार करते हैं जबकि 15 से 20 दोहराव मांसपेशियों की सहन शक्ति में सुधार करते हैं। दोस्तों, अधिकांश लोग एक प्रकार के व्यायाम या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं कि वे पर्याप्त कर रहे हैं। शोध से पता चला है कि सभी प्रकार के व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। सहन शक्ति, शक्ति, संतुलन और लचीलापन, हर एक के अलग अलग फायदे हैं। एक तरह का काम करने से दूसरों को करने की आपकी क्षमता में भी सुधार हो सकता है और विविधता, बोरियत और चोट के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। तो फिर आप भी व्यायाम को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।

0: महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए हैं।
1: ऐसे ही हमारे शहर के मध्य स्थित माणिक्य वाचनालय, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, की प्रबंधक महोदया सीमा भावसार से हमने बात की। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में। हमारे श्रोताओं को अपने वाचनालय के बारे में बताइए।
2: धन्यवाद। मैं सीमा भावसार, प्रबंधक माणिक्य स्मारक वाचनालय। यह वाचनालय अत्यंत प्राचीन धरोहर है खंडवा की, जो शहर के मध्य महात्मा गांधी रोड पर स्थित है और इसकी स्थापना 1883 में मध्य प्रदेश के मुख्य आयुक्त श्री जॉन मॉरिस की स्मृति में की गई थी।
1: जी, तो इस वाचनालय का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: इसका उद्देश्य शिक्षा की वृद्धि एवं विज्ञान का प्रसार करना है।
1: जी, वर्तमान में वाचनालय में लगभग कितनी पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध है?
2: वर्तमान में लगभग 16,200 के करीब पुस्तकें हैं, जिसमें साहित्य भी है, उपन्यास है, नाट्य है, पद्य है, गद्य है, धार्मिक ग्रंथ है और प्रतिमा आने वाली पत्र पत्रिकाएं भी उपलब्ध होती है।
1: जी, आज के डिजिटल युग में भी पुस्तकें पढ़ने की आदत को आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं?
2: देखिए, आज का जो डिजिटल युग है, इसमें पुस्तक पढ़ने की आदत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया से जानकारी तो प्राप्त करना आसान बना दिया है, लेकिन पुस्तक का स्थान आज भी विशेष है, क्योंकि पुस्तकें केवल जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे विचार, भाषा, व्यक्तित्व का भी विकास करती है। और पुस्तक पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है।
1: जी।
2: और जो विद्यार्थी नियमित पुस्तक पढ़ते हैं, उनकी भाषा शब्दावली बढ़ती है और उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: जी, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो युवा हमारे, उनको आपके वाचनालय में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है?
2: देखिए, अभी डिजिटल युग को देखते हुए वाचनालय ने वाईफाई की सुविधा बच्चों को, विद्यार्थी जो बैठ के पढ़ाई करते हैं उनके लिए दी है, और जो उनकी किताबें, जो पत्रिकाएं, जो मासिक पत्रिकाएं, इसके अलावा बच्चों की जो डिमांड होती है प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, तो वो हमें लिख कर देते हैं और उनके सुविधा के लिए हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। वाचनालय में विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो युवक युवती हैं, उनके लिए यहाँ पर कई पत्रिकाएं जो प्रतिमा आती है एवं समाचार पत्रों की प्रतियां भी यहाँ पर उपलब्ध रहती है। साथ ही वाचनालय में बच्चों के लिए मनोरंजन की पत्र पत्रिकाएं भी उपलब्ध होती है।
1: जी।
2: और समय समय पर यहाँ पर ज्ञान के लिए व्याख्यान माला वगैरह भी हम लोग रखते हैं, जो साल में 2 या 3 बार प्रोग्राम होते हैं, ऐसे साहित्यिक प्रोग्राम हम रखते हैं ताकि बच्चों का नॉलेज बढ़े।
1: जी, पिछले कुछ वर्षों में पाठकों की रुचि और पढ़ने की आदतों में आप क्या बदलाव देखती हैं?
2: देखिए, बदलाव तो है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो पाठकों की रुचि पढ़ने की आदतों में काफी बदलाव आया है। पहले लोग अधिकतर छपी पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ते थे, जबकि आज डिजिटल माध्यमों का प्रभाव इतना तेजी से बढ़ रहा है कि अब लोग मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से ई बुक, ब्लॉग आदि पढ़ने लगे हैं।
1: जी, आपके वाचनालय की सदस्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है और इसके क्या लाभ है?
2: देखिए, हमारे यहाँ सदस्यता 3 प्रकार की होती है। एक संरक्षक सदस्य होते हैं, जो एक निश्चित शुल्क जमा कर हमेशा के लिए संरक्षक बन जाते हैं, और दूसरे होते हैं आजीवन सदस्य, इनका भी एक निर्धारित शुल्क है। और बाकी जो सदस्य की श्रेणी है वो 2 श्रेणियों में बटी हुई है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी के सदस्य ऐसे होते हैं जो मासिक चंदा, जिसको बोल सकते हैं, या डोनेशन, क्योंकि ये एक ट्रस्ट है
1: जी,
2: जो कि चैरिटी के लिए काम करती है, तो इसका सदस्य बनने के लिए आप आवेदन फॉर्म दिया जाता है, उसको वो फिल करते हैं। और साथ ही प्रथम श्रेणी के लिए एक जो शुल्क होता है, मासिक जो नॉमिनल होता है, उस पे प्रथम श्रेणी में ये फायदा होता है कि वो 2 पुस्तकें 15 दिन के लिए ले जा सकते हैं और पढ़कर वापस दे सकते हैं, उनका एक कार्ड बनाया जाता है। और द्वितीय श्रेणी के लिए 1 पुस्तक 8 दिन के लिए उपलब्ध की जाती है, जो उन्हें वापस जमा करके दूसरी पुस्तक इश्यू करी जाती है।
1: जी, क्या भविष्य में वाचनालय के विस्तार या नई सुविधाओं को इस वाचनालय से जोड़ने की कोई योजना है?
2: हाँ, योजनाएं तो काफी समय से चल रही है, देखते हैं अब कभी पूरी हो, क्योंकि हम चाह रहे हैं ई लाइब्रेरी बनाना और जो केबिन सुविधाएं, जो बच्चों को, हम दूसरी लाइब्रेरियों को हमेशा देखते रहते हैं कि हम अपने बच्चों को और क्या सुविधा दे सकते हैं। अभी तो हम जैसे बच्चों के लिए वाईफाई और कूलर, वाटर कूलर वगैरह हम लोग दे ही रहे हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, लेकिन हम चाहते हैं इसे आधुनिक बनाना। और वो हमारी कार्यकारिणी के सदस्य और प्रबंधक समिति है, वो सभी अभी योजना में लगे हुए हैं, शीघ्र ही ये एक नया रूप लेगी।
1: जी, सीमा जी, अंत में हमारे श्रोताओं को, विशेषकर हमारे युवा वर्ग है जो, उसके लिए आप क्या क्या संदेश है?
2: युवा, देखो क्या है, हमारी जो अभी

0: श्वेता, कहा जाता है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दीपमाला। आज के डिजिटल युग में जब अधिकांश जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है, तब भी पुस्तकालय और वाचनालय ज्ञान, अध्ययन और चिंतन के महत्व

0: हम एक आंकड़ा देख रहे हैं कि 63% युवा हमारे देश में जनगणना के अनुसार आने वाले हैं।
1: जी
0: तो ये युवा, जो किसी भी देश का जो युवा होता है वो सबसे बड़ी ताकत होता है, और उनके सपने, मेहनत और सोच ही राष्ट्र का भविष्य तय करती है। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वे अपने समय का सही उपयोग करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैडम, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमें वाचनालय की गतिविधियों और पुस्तकों के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमें विश्वास है कि आपकी बातें हमारे श्रोताओं को पढ़ने के लिए प्रेरणा देगी। बहुत बहुत
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी।

0: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम। आज कार्यक्रम लेकर आपके साथ मैं थी दीपमाला
1: और मैं श्वेता।
0: आपको हमारा आज का गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा।
1: और चलते चलते एक बात और, इतनी गर्मी और तपिश में और गर्म हवाओं के बीच अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें।
0: पर्याप्त पानी पिएं और दोपहर में बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं। अब अनुमति दीजिए दीपमाला
1: और श्वेता को।
0: आपका दिन शुभ हो,
1: सफल हो
0: और मुस्कुराहटों से भरा हो।
1: नमस्कार,
0: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग खंडवा।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
4: गुड मॉर्निंग खंडवा।
0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा। प्रस्तुति दीपमाला शिंदे और श्वेता सोनी की थी। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 18

0: भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात

0: टाइटन से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है निमाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं सोदान सिंह सोलंकी और साथी। लीजिए सुनिए ये लोकगीत।

0: रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुनी रहे आज निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं निमाड़ी लोकगीत। आज के कलाकार हैं सोदान सिंह सोलंकी और साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे निमाड़ी लोकगीत। आज के कलाकार थे सोदान सिंह सोलंकी और साथी। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। ये प्रस्तुत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: कार्यक्रम आपके मीते गीत में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपके फरमाइशी ईमेल से। बरका काना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और अफजल इब्राहिम। बीड़ से किसा सबकाल, आशा सबकाल, साईंराज, सोनिया और विशाल सबकाल। खंडवा से राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी, कामेश्वर, भारती यादव। बड़वा से भारती कुशवाहा, मनीष, पार्थ और रणवीर कुशवाहा। बागबहरा बदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन और कौशल सेन। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। नागपुर से वैशाली, शैलेंद्र गवाणकर, श्वेता, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर। नेपानगर से सुदर्शन।

शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह। सनावत से है हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव कृतिका, काव्यांशी और प्रभा कटारिया। मोटाका माफी से पसंद भेजी है जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल ने। मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। उमरखेड़ से अभिजीत गवाणकर, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत गवाणकर और एकांश गवाणकर। बक्सर से इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश की है शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, आसमा खातून, राज एस डी अंसारी, असलम, आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी। डुमराव से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और वली मोहम्मद अंसारी। खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे। सुपौल से श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, राजेंद्र कुमार, निराला और चिलना झा। तेलहारा से प्रकाश पोहारकार, नर्मदा पोहारकार, सुजाता पोहारकार। दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना और आशीष राजा। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशव खुराना। और भोपालगढ़ से पसंद भेजी है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार ने। आप सभी सुनना चाहते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार को। बोली के है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, फिल्म है जॉनी मेरा नाम।

कार्यक्रम का अगला गीत है बुलंदी फिल्म से, आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोसले की, संगीत आर डी बर्मन का, शब्दकार है मजरू सुल्तानपुरी। और इस गीत के लिए को सुनवाने के लिए पसंद भेजी है नथाना पंजाब से हरजिंदर जिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, किशनगंज से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया, वडिंगखेड़ा से मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नागर कोहरा से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत और आराध्या साहू, सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पलो डिकोस्टा और विलिस डिकोस्टा, जाखोज से समुदायल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खट्टक, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, श्रीगंगानगर से मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका और ममता अरोड़ा, सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार, ओम कुमार, कुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी अच्छे लाल राय और बुल्की वाली और फलना झा, सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश और मुस्कान मालाकार, पंडरपुर से है प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज ऋषि और कृष्ण शिंदे और कृष्णा घोड़के, खंडवा से शालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्रा डावर, आयशा खत्री, धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री, जाकिर खत्री, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फा डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, आकोट से पसंद भेजिए विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय, शुभम, पवन और के संजीव डाबेराव ने, सनावत से मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद यासिम, मोहम्मद इशाक और बब्बू डब्बू, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली छत्री, और सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रिश खत्री, नूरू मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपके मीठे गीत। कार्यक्रम के अगले गीत को सुनने के लिए फरमाइश की है इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक परी, खुशी और वंदना खर्चे और साथ में है स्वाति प्रयाग चौधरी। खंडवा से विजय मोहबिया, कविता मोहबिया, विशाल, विवेक, सोनू मोनू, रानू, देवराज मोहबिया, सपना, शिवी सलोनी, पेंटर बाबू, अनिल सोनी और सुदामा। सनावत से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना। परभणी से रुपये संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रीति संघई। खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह वेस, रिया, रोहन और अंगद ठाकुर। ओंकारेश्वर से है राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, ओम सेन, कुमारी सपना, धर्मेंद्र, मुकेश, ऋषि सेन और द्वारका भाई सेन। इंदौर लिंबोदी से गिदारीलाल चौधरी, मनीषा भाई चौधरी। खंडवा से ही दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी, गौरव, ईशान, कार्तिक सैनी। बेगूसराय से इस्माइल आजाद, नन्हे बाबू, अदीफा अफसरी, कमर जहाँ, शाह आलम, भाई वली आलम। छोटी बलिया से नूर आशा, अहमद बागवान, दुखना रानी, जूही इकबाल, सदब अहमद। खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, फाल्गुनी जोशी। करजत मुंबई से अहमद मोगा, सुरेश और अजीत मोगा। दिल्ली से अहमद हसन।

सलमा हसन, गुलाब हसन, पड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनीता कटारे, उदय उज्ज्वल और मितांश कटारे, सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सोनाली जोशी, आशु अहमद और अहमद कपूर, और ग्राम बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश साहू और रेशमा साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को, जिस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीता आडी बर्मन का, फिल्म है चरित्रहीन।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

जी हाँ श्रोताओं, आपने चुना है 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी खंडवा को। आपके प्यार का साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीते गीत। कार्यक्रम का अगला गीत है गुलामी फिल्म से, स्वर लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, बोल लिखे गुलजार ने, और इस गीत को सुनवाने के लिए पसंद भेजी है लकड़ा बाजार खंडवा से मोहम्मद रफी पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, कैलाश फुलमाली, माणक चंद राठौर, बेबी आयत फातिमा, मोहम्मद हसनैन पवार ने। निम्नाबाद जींद हरियाणा से जसबीर सिंह इलमावादी, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। भाटापारा से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, आनंद राठौर, गिरिजा राठौर, लोकेश जोशी, पायल जोशी, सावन नायक, बबला यादव, अंकिता जोशी, वेदही जोशी। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता वामिका गंगराड़े। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन समृत, हेमेंद्र सन्मति पंचोलिया। नरवेल से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर। आष्टी जालना से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाव तांदले। कापासेड़ा बॉर्डर से आमना नसरीन, आसमा परवीन। छोटी बलिया से नूरायशा अहमद बागवान, नवासी आशु अहमद बागवान, दुखना रानी जूह इकबाल। बेगूसराय से अदीबा अफसरी, इस्माइल आजादोस, शाहू भाई, वली आलम। अमरावती से सिद्धांत गुंडाने, अर्चनताई गुंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, महेश राम टेके। बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहराज जहां। और खंडवा से अब्दुल हमीद खलीफा, हबीब सलमानी, सकीब सलमानी और जावेद खलीफा। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके मीते गीत समाप्त करने की अनुमति दीजिए दीपमाला को। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: अभी आप सुन रहे थे आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। FM बैंड 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं, अब से लेकर सुबह के 10 बजे तक आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

ढाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: फिल्म देवदास का ये गीत था। गीत और संगीत थे पंडित बिरजू महाराज के। पंडित बिरजू महाराज, कविता कृष्ण मूर्ति और माधुरी दीक्षित की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओ, भारतीय सिने जगत के जाने माने अभिनेता और फिल्मकार सुनील दत्त की आज पुण्यतिथि है। इनका असल नाम बलराज रघुनाथ दत्त था। फिल्म जगत के एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे शख्सियत जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लगभग 5 दशकों से ज्यादा के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। 1955 में अभिनेता सुनील दत्त ने फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में ही उन्होंने एक से बढ़कर एक सफल फिल्मों में काम किया। एक ही रास्ता, मदर इंडिया, सुजाता, गुमराह, वक्त, हीरा, खानदान, मेरा साया, हमराज, मिलन, छाया, गबन, जाग उठा इंसान, आम्रपाली, पड़ोसन, रेशमा और शेरा, ऐसी कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में सुनील दत्त ने दी। 1995 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सुनील दत्त ने अभिनेत्री साधना, मीना कुमारी, मधुबाला, वैजयंती माला, नूतन और नरगिस जैसी सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ बेहद सफल फिल्में की। बाद के दशकों में वो राजनीति में भी सक्रिय रहे। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस उनकी शरीके हयात थी। नम्रता दत्त, प्रिया दत्त उनकी बेटियां हैं और सुप्रसिद्ध अभिनेता संजय दत्त उनके बेटे हैं। आज ही के दिन 25 मई सन 2005 में उन्होंने अंतिम सांसें ली। तमाम पुरस्कार तो उन्होंने अपने नाम किए ही। 1968 में अभिनेता सुनील दत्त को पद्मश्री और 2005 में मरणोपरांत फाल्के रत्न पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया।

द डर्टी पिक्चर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी कमाल खान की, रजत अरोरा के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। श्रोताओ, आज सिनेमा जगत के यानी भारतीय सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि है। इनका पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर था। इनकी मुलाकात संगीतकार प्यारेलाल जी से हुई और दोनों ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के रूप में सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक गीत दिए, जिनका संगीत आज भी उतना ही मशहूर है। लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन के साथ साथ तमाम और वाद्यों को बजाना सीखा। 1963 में इस जोड़ी ने फिल्म पारसमणि के लिए कालजयी गीतों को सुरबद्ध किया। इससे पहले संगीतकार लक्ष्मीकांत ने बतौर बाल कलाकार फिल्म भक्त पुंडलिक और 1950 की फिल्म आंखें से अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म दोस्ती, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आए दिन बहार के पत्थर के सनम, इज्जत, साजन, अनजाना और दो रास्ते जैसी फिल्मों के लिए दिल को छू लेने वाले गीतों को संगीत से सजाया इस जोड़ी ने, और लगभग चार दशकों तक सुरीले संगीत का उनका सफर चलता रहा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी की अगर बात की जाए तो लगभग 750 फिल्मों से अधिक में इन्होंने गीतों को संगीत से सुरबद्ध किया। हम संगीतकार लक्ष्मीकांत की पुण्य स्मृति को नमन करते हैं।

देवास जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। शहरों में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि गांव में तापमान 45 डिग्री के आसपास घूम रहा है। दोपहर में सड़कें सूनी और लोग छांव तलाशते नजर आ रहे हैं। वहीं खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में क्लाइमेट ग्रीन इकोनॉमिक जोन परियोजना लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे हरित उद्योग, सौर ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश आएगा। विधायक आशीष शर्मा की मौजूदगी में कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में तय किया गया है कि इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जाएगा। इसी बीच जनगणना 2027 की तैयारियां भी पूरे जोर पर हैं। जिले में 1 मई से घर घर जाकर डिजिटल तरीके से मकानों की गिनती की जा रही है। अब तक 3,59,000 से ज्यादा मकानों का रिकॉर्ड तैयार हो चुका है। गर्मी के बीच पानी बचाने की मुहिम भी तेज हो गई है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत गांव गांव में कुएं, बावड़ियां और नदी नालों की सफाई हो रही है। वहीं शिप्रा नदी के घाटों पर भी साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। देवास नगर निगम ने कचरे को भी कमाई का जरिया बना दिया है। शहर से रोज निकलने वाला 60 से 65 टन गीला कचरा अब शंकरगढ़ प्लांट में खाद में बदला जा रहा है, जहां हर दिन 10 से 12 टन जैविक खाद तैयार हो रही है। दूसरी ओर जंगलों में भी रौनक बढ़ गई है। सतवास, कन्नौद, बागली और निमावर जैसे इलाकों में तेंदूपत्ता तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इस साल करीब 1,00,000 फानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। खेती किसानी की बात करें तो कृषि विभाग का किसान रथ गांव गांव घूमकर किसानों को खरीफ फसलों की नई तकनीक, उन्नत खेती और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी दे रहा है। मूंग और उड़द बेचने वाले किसानों के लिए भी जरूरी खबर है। 25 मई यानी आज से 15 जून तक सरकारी खरीद के लिए पंजीयन होगा। इस बार ओटीपी नहीं बल्कि आधार से फेस स्कैन कर पहचान की जाएगी। जनजातीय इलाकों में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। सबसे दूर सबसे पहले अभियान के जरिए गांव में पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। देवास में कुपोषित बच्चों के लिए किलकारी अभियान 2.0 उम्मीद बनकर सामने आया है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को अमलतास अस्पताल में भर्ती कर मुफ्त इलाज दिया जा रहा है और अब तक 72 बच्चों को भर्ती कराया जा चुका है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। जिले में एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 12,457 बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर

0: महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। जिले में एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 12,457 बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। जिला जेल देवास में लगे विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। प्रधान जिला न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्रा ने बंदियों से सीधे चर्चा कर उनके मामलों की जानकारी ली। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 3 जून को मल्हार स्मृति मंदिर में विशाल प्लेसमेंट ड्राइव होगी, जहाँ 450 पदों पर भर्ती की जाएगी और चयनित युवाओं को करीब 17,000 रूपये वेतन मिलेगा। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन सख्त हो गया है। नेमावर, फतेहगढ़ और शिप्रा में बिना लाइफ जैकेट नाव चलाने, सूर्यास्त के बाद नौकायन और नशे में बोटिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स के लिए ऑनलाइन पंजीयन भी शुरू हो गया है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के इच्छुक छात्र 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिले के बीपीएल परिवारों के बेरोजगार युवाओं के लिए बैंक ऑफ इंडिया का आरसीटी केंद्र 30 दिन का मुफ्त मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करा रहा है, जिसमें रहना खाना ट्रेनिंग सामग्री सब मुफ्त मिलेगी। कोर्स के बाद खुद का काम शुरू करने के लिए सरकारी लोन दिलाने में भी मदद की जाएगी। इच्छुक युवक 9893193973 पर संपर्क कर पंजीयन करा सकते हैं। और आखिर में एक प्रेरणादायक खबर, ग्वालियर के बादल राजपूत ने सरकारी छात्रवृत्ति योजना से 33 लाख रुपए की मेडिकल पढ़ाई पूरी की और अब दतिया में सरकारी डॉक्टर बनकर सेवा दे रहे हैं। अब सरकार ने ऐसे होनहार छात्रों की पूरी एमबीबीएस फीस उठाने का फैसला किया है। देवास जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
2: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्राजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। नई नई जानकारी मिलती है जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली, पोस्ट खेरथा बाजार, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मन तीन भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
3: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए।

0: से निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है, जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर।
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंको जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ,
5: ये क्या हुआ? अरे बचो बचो बचो,
6: फट जाएगा, फट
5: जाएगा, सभी साथ पीछे हटो, जमीन पर लेट जाओ,
6: तुम्हारा निकल रहा है, तुम्हारा निकल रहा है, तुम्हारा निकल रहा
2: है। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?

0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
1: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
3: सही में
2: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
4: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
5: May I come in, sir?
1: Yes, come in.
5: Sir,
1: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
5: सर,
1: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
5: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, कहो।
5: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
1: ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
5: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
1: गो अहेड यंग मैन।
5: सर,
4: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
4: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
6: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
7: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
6: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
8: जी जनाब।
1: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
5: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
7: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
5: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
7: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
6: फायर।

0: सर, यह टैंक तो गया।
1: गुड, तो अब निशाना लगा उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
0: सर, यह टैंक तो गया।
1: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। Go and send them to hell! Fire!
0: Yes, sir!
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया, भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निगल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।
4: हमारे अगले कार्यक्रम के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार। गुनगुनाते रहें और सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
5: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
6: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
5: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
6: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
0: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
3: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी सुनने वाली सभी बहनों ने कार्यक्रम लई न आज आपका साथ छे आपकी बहन प्रतिमा तो स्वीकार करो मारी राम राम। बहनों ने आज का कार्यक्रम हम आप सभी नख एक ऐसी जानकारी देऊंगा जी आपका सपना नख पंख दे सकज। बहनों ने आजकल हम देखांच कि परिवार की खुशी का लेन बहन भी आर्थिक सहायता में अपनो सहयोग देज, पर कई बार जानकारी का अभाव में वो अपनी सही दिशा में आग नहीं बढ़ी पाती है। बहनोनी आज सभी इन्हीं बात ख जानती होएगा कि सरकार का द्वारा प्रत्येक व्यक्ति ख आग लाना का लेन कई प्रकार की योजना न चलाई जा रही। नवनी योजना नमसी एक योजना छे मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ये एक सरकारी योजना नी छे बल्कि बहन नख आत्मनिर्भर बनाना की दिशा में एक मजबूत कदम आए। कई बार हम देखांश न सुनान कि हुनर होना का बाद भी पूंजी की कमी सी बहन कोई उद्योग शुरू नहीं करी पाती है। इन्हीं समस्या का दूर करने का लेन मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत करी। ये योजना प्रदेश की शिक्षित बहन अरु युवा भाई नख अपना स्वयं को उद्योग सेवा व्यापार शुरू करने का लेन कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध करावज। जरूरी बात कि इन योजना में सरकार की ओर से ब्याज सब्सिडी अरु गारंटी दुई मिलज। इन योजना ख दुई श्रेणी मुख्य श्रेणी न बांटो गयो जेम विनिर्माण इकाई का लेन कदी आप कोई छोटी फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू करना चाह रहे तो 1 लाख से 50 लाख तक को लोन मिली सकज। वाहन सेवा अरु व्यापार का लेन कदी बहन कोई दुकान ब्यूटी पार्लर बुटीक अरु कोई सर्विस सेंटर खोलने की सोची रही तो एका लेन 1 लाख से 25 लाख तक की सहायता लोन का रूप में शासन से ले सकज। इन्हीं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का कई लाभ छे जैसो कि 3% ब्याज अनुदान सरकार हितग्राही ख सालाना ब्याज दर पर 3% की छूट देज। ये सहायता अधिकतम 7 वर्ष तक मिलज। बैंक लोन की जी गारंटी फीस

ओको भुगतान भी सरकार का द्वारा कियो जाए। ये पूरी प्रक्रिया आसान रहे जेमें पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता की बात करा तो एको लाभ लेना का लेन कुछ शर्त न रहे जिनको पूरा होनु जरूरी छे। सबसे पहला इनी बात को ध्यान रखा कि हमका मध्य प्रदेश को मूल निवासी होनु चाहिए। आवेदन करने वाला की उम्र 18 से 45 वर्ष का बीच होनु चाहिए। न पात्र बैंक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा पास होनु चाहिए। साथ ही ध्यान रखा कि आवेदनकर्ता बैंक की परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनु चाहिए। पात्रता में ये भी देखो जाए कि आपको कोई बैंक में पहले से बकाया तो नहीं होए। मैंने होनी अब बात करा योजना का लेन आवेदन करना की तीन योजना का लेन आवेदन करनु सरल आए। आवेदन करना का लेन हमको पोर्टल पर जाई करना ऑनलाइन आवेदन करनु पड़ेज। जे का लेन कुछ जरूरी काम काज साथ कागजात साथ होनु चाहिए। जैसो कि आधार कार्ड राशन कार्ड कदी होए तो मार्कशीट कम से कम 8वीं कक्षा की या ओका ऊपर की कक्षा की निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिमें आप काई काम करने की सोची रहे ओको पूरा संक्षिप्त विवरण होनु चाहिए। तब बहनोनी आप सभी भी मुख्यमंत्री क्रांति योजना की ज़्यादा जानकारी लेना इन योजना को लाभ ले सकोज। बहनोनी योजना न तो कही रहे पर हमको उनमें सफलता तवज मिले जब हम आत्मविश्वास का साथ कोई काम कर शुरू कराज। न बहनोनी आओ अव सुना कांता चौहान को गायली गणपति भजन।

0: बहनोनी, अभी हमने कांता चौहान को गायल गणपति भजन सुनियो।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: फसी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ना बहनोनी, आओ अब सुना वार्ता। विषय छे कला का क्षेत्र में बहन किना प्रकार आगे बढ़ा। जानकारी दे रही कला शिक्षिका श्वेता गीते।
4: सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मैं श्वेता गीते कला शिक्षिका हूँ। आज मैं आप सभी बहनों से कला के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसा कि अपन जानते हैं कि एक महिला के जीवन में समय की क्या अहमियत है। हर महिला सोचती है कि कैसे मैं अपने समय का सदुपयोग करूं। आज मैं आपको कला के बारे में जानकारी देना चाहती हूं। कला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिससे हम अपने जीवन को रंगीन कलाकृतियों से सजा सकते हैं और एक नया रोजगार खड़ा कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूंगी कि कला 64 प्रकार की होती है, जिसमें कई प्रकार की कलाएँ हैं, जैसे कि पाक कला आती है, चित्रकला आती है, हस्तकला आती है, लेखन कला आती है, वादन कला आता है, नृत्य कला है, गायन कला है, मुख सज्जा है जिसे हम मेकअप कहते हैं, केश सज्जा है, आदि कलाओं का वर्णन किया गया है। और भी कई प्रकार की कलाएं हैं। अब बात आती है घरेलू महिलाओं की। अगर घरेलू महिलाओं की बात करें जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अपने आप को समय नहीं दे पाती हैं और वो सोचती हैं कि हम अपने आप को समय कैसे दें, मैं अपने समय का सदुपयोग कैसे करूं? ऐसा कोई कार्य जिससे मैं अपने घर को भी सजा सकूं, अपने घर के सदस्यों का ध्यान भी रख सकूं और अपना खुद का भी एक अर्निंग वाला काम जो जिससे मैं कमा सकूं, ऐसा कोई कार्य करूं। तो हम अपनी कलाओं के द्वारा अपनी पसंदीदा कला चुनकर क्यों ना घर से ही कुछ एक रोजगार चालू करें। इसमें आप कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जिसमें हम चित्रकला और हस्तशिल्प कला की बात करें तो जैसे गृह सज्जा की जब बात होती है तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक सिर्फ महिलाओं के लिए हो जाता है कि भाई महिलाएं घर को कैसे सजा सकती है। एक महिला का एक काम है कि आप घर को कैसे सजाएं, कैसे संभालें। तो उसके चलते हम गृह सज्जा के लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि अपने घर में कई प्रकार के बेकार कपड़े पड़े रहते हैं, कई प्रकार के खराब वस्तुएं पड़ी रहती, उनको हम कैसे सुंदर बनाएं, वो हम आइडिया निकालें, उसको हम सीखें कैसे हम इनका उपयोग कर सकें। कई चीज़ें अनुपयोगी हमारे घर में वस्तुएं रहती हैं, तो कुछ नया बनाने के लिए जैसे कपड़ों पर चित्रकारी करना, फिर कपड़ों पे तारा सितारा वर्क करना, उसके बाद में जरी वर्क करना, ये सब आरी वर्क होता है एक वो वाला वर्क करना, तो या फिर कपड़ों कैनवास पेंटिंग करना, छोटे छोटे कैनवासों पर भी आप पेंटिंग करके अपने घर को सजा सकते हैं। अपने घर में बेकार पड़ी चीज़ों को भी आप अच्छा बनाकर उसमें कोई आइडिया निकाल कर आप उसको सजा सकते हैं। चित्रकला से आप साड़ी सूट कुर्ता चुन्निया चादर कुशन आदि कई चीज़ों पे आप रंग रोगन करके चित्रकला करके आप उसको सजा संवार सकते हैं। घर से ही तैयार करके और इन चीज़ों को आप ऑर्डर लेकर घर से ही तैयार करके आप इन्हें बेच भी सकते हैं। घर में पड़े बेकार से कपड़े के जैसे चिंदे हुए हमारी कटिंग, कई महिलाएं सिलाई करती है उसमें से कटिंग निकलती है, या फिर हमारे ही पुराने घर में

0: मतलब घर में पुराने चादर कपड़े कुछ हो, उनको बढ़िया धो के प्रेस करके आप उनका कोलाज आर्ट कर सकती हैं, कवर कवर बना सकती हैं, कुशन कवर बना सकती हैं, आसन बना सकती हैं, उसका चादर बना सकती हैं उसका। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने ही घर से रोजगार के रूप में शुरू कर सकते हैं। अपन कपड़ा खरीद के आप घर के अंदर ही बैग बनाएं, छोटे बड़े सभी प्रकार के बैग बनाएं, बैग के ऊपर आप चित्रकारी करें या कोई वर्क करें, बहुत ही खूबसूरत लगती है वो चीज़ें। आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें कि हस्तशिल्प कला की, तो हस्तकला में मतलब एक क्राफ्ट है। आप पुरानी अपने पास में बॉटल, केन, डब्बे, ये सब बहुत सारी चीज़ें काफ़ी रहती है, इन चीज़ों को सजा सवार सकते हैं आप लोग। मतलब और अपने घर के डेकोरेशन को भी बना सकते हैं, जो एक बार आपका डेकोरेशन कोई देखेगा फिर वो आपको ऑर्डर देगा। ये चीज़ें आप लोग आजकल बहुत सारी नई नई चीज़ें चल गई हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पर आप अपनी रील्स डालें और अपने आप को फेमस करें, आपके पास ऑर्डर आएंगे, अपना रोजगार स्टार्ट हो जाता है। जब हम हस्तकला की बात कर रहे थे, तो हस्तकला में बेकार पड़ी अपने पास में जैसे प्लास्टिक की बॉटल, ट्रे, कप, थाली आदि अन्य चीज़ों से हम अपने उसको सजा कर आप मतलब रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से दो चार ऐसे आइटम बना के रखें जो दिखाने में आपको काम आए, उसको बेच सकते हैं आप, सेलिंग में गिफ्ट के रूप में आप दे सकते हैं। कई प्रकार के इस तरीके के सजा कर अपन चीज़ों को बेच सकते हैं। इन सभी चीज़ों से आप अपना आय का स्रोत बना सकते हैं। अब बात करें अगर पाक कला की, तो पाक कलाओं से हम अपने घरों में सूखे आइटम बना सकते हैं, उनकी पैकिंग कर सकते हैं। जैसे अभी चल ही रहा है कि भाई पापड़, चिप्स, कुड़लाई और जैसे तरह तरह के स्नैक्स बन रहे हैं, ये भी हम घर से ही पैकिंग करके और इसका भी एक रोजगार चालू कर सकते हैं। आप घर में बड़ी बना सकते हैं, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं घर से ही बना के अपन बेच सकते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकें तो फिर हम टिफ़िन सेंटर चालू कर सकते हैं। आज मेरे घर के आसपास ही कई महिलाएं टिफ़िन सेंटर ही चला रही है और घर से कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो भी एक बहुत अच्छा अर्निंग का साधन है। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात कुछ बताती हूँ, जैसे कि व्यवसाय शुरू करने के लिए अपने कुछ बातों का आप ध्यान रखना होगा। पहला कि वह कला को आप चुनिए जो आपको पसंद हो, जो आप जिसमें आप बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं, जिसे आप हमेशा के लिए अपने आप को उसमें उतार सकते हैं, आप उसमें मतलब उसको हमेशा चला सकते हैं, ऐसे कुछ चुनिए। आप इन सब कलाओं में से एक कला, कोई भी आप अच्छे पसंदीदा कला चुन सकते हैं। दूसरा देखे जाए तो आपको अपने काम की काबिलियत पर ध्यान देना होगा, उसे हमेशा सकारात्मक सोच से ही उसे चालू करें और हमेशा सकारात्मक सोच से ही उसे आगे बढ़ाएं। तीसरा, आपको अपने 10 से 20 आइटम तैयार करके रखना होगा पहली बात, क्योंकि जब भी आप किसी को बताएंगे तो आपके पास में पहले से ऑप्शन होना चाहिए। चौथी बात करें तो कीमत का निर्धारण करना होगा कि आप क्या चीज़ कितने में देना चाहते हैं, है ना। उसकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। अगर आप पाक कला के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, उसमें आइटम अच्छे होना चाहिए। चित्रकला की बात करें तो आपको उसमें भी क्वालिटी का ध्यान रखना है कि आप कौन से कलर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कैनवास यूज़ कर रहे हैं, या आप बेडशीट पर जो कुशन बना रहे हैं। साड़ी कपड़े के लिए तो आपके पास सामने से ऑर्डर आते हैं और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसमें ग्राहक। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहकों की मांग के अनुसार आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे और समय का भी ध्यान रखते हुए कि हाँ भाई हम समय से उनको कंप्लीट करके दें। तो जितनी जल्दी आप सामने वाले के लिए कंप्लीट करेंगे उतनी आप अपनी कीमत भी जितना बोलेंगे, है ना, उस अनुसार आप अपनी कीमत को बढ़ाते भी जाएंगे, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितना काम को समय देंगे उतनी हम कीमत भी लेंगे। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा क्योंकि अर्निंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने एक कार्य को जितनी जल्दी कंप्लीट कर लोगे आपको वैसे ही दूसरा काम भी मिलेगा, है ना, और इसी प्रकार हमारा रोजगार चालू हो जाता है और एक बड़े स्तर तक पहुंच सकता है।
1: बहनों ने अभी हम वार्ता सुन रहा था, वार्ताकार थी कला शिक्षिका श्वेता गीते। नया बहनों ने अब घरेलू नुस्खा की बात करा तो गर्मी को मौसम चली रहे जेका सी कई बहन त्वचा का संक्रमण थी परेशान रहे। असामा त्वचा का संक्रमण से बचना का लेन

गर्मी में सूती यानी कि कॉटन का कपड़ा पहना। जी ढीला होए सूती कपड़ा पसीनो आसानी सी सोखज, जेका सी त्वचा संक्रमण खुजली अरुरेशा नसी बची सकान। गर्मी में हमको ज्यादा करी कना हल्का रंग का कपड़ा पहननु चाहिए। न बहनोनी अव व्यंजन की बात करा तो गर्मी में हमारा शरीर में पानी को होनु जरूरी छे। एका लहन हम छाछ यानी कि मट्ठा की लस्सी बनाई सकांज। ये शुद्ध घर की बनेल रहेज, न शरीर का ठंडो रखज। छाछ की लस्सी बनाना का लेन छाछ में स्वाद अनुसार शक्कर, नमक, कालो नमक, सिकेल कूटो जीरो न अपना स्वाद का अनुसार कुटेल काली मिर्च भी डाली सकांज। साथज बहनोनी हम शरीर का ठंडो रखना का लेन सब्जा का बीज न की शिकंजी भी बनाई सकांज। बहनों होनी शिकंजी का लेन सब्जा का बीज यानी कि तुलसी का बीज एक छोटो चम्मच, नींबू को रस दुई चम्मच, शक्कर तीन से चार चम्मच, आधो चम्मच कालो नमक, भुनेल जीरा को पाउडर आधो चम्मच, पुदीना का पत्ता आठ से दस, ठंडो पानी दुई गिलास, बर्फ का टुकड़ा आवश्यकता अनुसार ले सकांज। बहनोनी इन्हीं सामग्री का साथ शिकंजी बनाना का लेन सबसे पहला सब्जा का बीज नख आधो कप पानी लेना 15 से 20 मिनट तक भिगावा। ये बीज कुटी फूली न जेली जैसा हुई जाए। फिर एक बर्तन में ठंडो पानी लेवा, एमें शक्कर मिलावा, फिर पानी में नींबू को रस, कालो नमक, भुनेल जीरो पाउडर अच्छी तरह मिलावा। शिकंजी को स्वाद बढ़ाना का लेन उमें कुचलेल पुदीना का पत्ता भी डाली सकांज। न चम्मच सी चलावा, फिर एक कांच को ग्लास लेना, उमें दुई चम्मच भिगेल सब्जा का बीज डाला, न फिर तैयार कियो शिकंजी को पानी डाला, न फिर बर्फ डाली खन एक पी सकांज। बहनोनी ई ठंडो रहे शरबत। सब्जा का बीज न ख आम बोलचाल में बड़ी तुलसी का बीज भी कह सकांज। ई बीज काला रंग का होए जी पानी में भिगोना पर तेजी से फूली कर अपना चारा ओर सफ़ेद जेली जैसा परत बनाई लेज। आयुर्वेद का अनुसार एक इतासी ठंडी रहेज, जेका सी गर्मी में एक उपयोग ज़्यादा कियो जाएज। आप सभी भी शरीर का ठंडक देना का लेन, वजन का घटाना का लेन, पाचन तंत्र मजबूत करना का लेन, न ब्लड और शुगर नियंत्रण का साथ दिल की सेहत और त्वचा न बाल न की चमक बढ़ाना का लेन सब्जा का बीज न को सेवन करी सकोज। बहनों ने ध्यान रख जो गर्भावस्था में अरु ऑपरेशन का मरीज इनको सेवन नहीं कराई। न बहनों ने अव रसोई टिप्स की बात करा तो रोटी का नरम बनाना का लेन आटो गूंथत समय उमें थोड़ो सो गुनगुनो पानी अरु एक चम्मच मलाई मिलावा। दूध न मलाई मिलाना सी रोटी नरम अरु स्वादिष्ट बनाज। न बहनों ने आओ व सुना साधना उपाध्याय को गायली शिव भजन।

बहनोणी, अभी हमना साधना उपाध्याय को गायल शिव भजन सुनियो न बहनोणी। अब कार्यक्रम को समय भी पूरा हुयो, तो आज्ञा देव अपनी बहन प्रतिमा ख राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 11 बजे हैं। अब विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

कभी किसी की तारीफ की है? कर लीजिए। अगर तारीफ किसी शहर से हो तो कुछ ऐसी ही गजल बनती है। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं खूबसूरत एल्बम की है गजल, तलत अजीज की आवाज में, आनंद बख्शी के पुल और समीर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज़ में हम तो हैं परदेस में, यह गज़ल राही मासूम रज़ा ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे अ गिफ्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड गज़ल्स, इस एल्बम से अनूप जलोटा की आवाज़ में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को, जिसे लिखा है मुनीर ने। आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है।

याद में तेरी इस खूबसूरत सी नज़्म के बाद आइए सुनते हैं अगली नज़्म, गज़ल उसने छेड़ी। इस एल्बम से चंदन दास की आवाज़ में निदा फाजली के बोल और चंदन दास के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से चित्रा सिंह की आवाज़ में, इफ्तिकार माम सिद्दीकी ने इसे लिखा और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे ये नगमा पंकज उदास की आवाज़ में, जिसे संगीतबद्ध किया पंकज उदास ने ही। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला नगमा, जो कि होगा तलत अजीज की आवाज़ में।

हम सुन रहे थे नज्म आगाज द बिगनिंग सोनाली जलोटा इस एल्बम से। सोनाली जलोटा की आवाज़ में फैयाज जयपुरी के बोल और रूप कुमार राठौर के संगीत के साथ कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम है।
0: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही

0: बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए शुरुआत करते हैं यादों की महफिल का। ये प्यारा सा गीत मुकेश ने गाया है, राम अवतार त्यागी ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है और फिल्म है जिंदगी और तूफान।

0: हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताती है।
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम सुना रहे हैं आपको कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की यादों की महफिल हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अगला गीत आए दिन बहार के फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है मिस्टर इंडिया फिल्म से, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

हम सुन रहे थे ये गीत आशा फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब वक्त हो चला है कि ले लें एक छोटा सा विराम और सुनवा दें आपको ये संदेश यादों की महफिल में।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं अर्पण अपनापन फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल। और हम बता चुके हैं कि हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे हुए गीतों को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक सफर जो शुरुआत करता है एक इबारत के साथ, और वो इबारत लिखकर भेजते हैं हम आपको, और उस इबारत में होती है कुछ बातें, कुछ जज्बात, और छुपे होते हैं ढेर सारे गीत। आज की इबारत हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया पर इसे नहीं पढ़ा है। हमने आज इबारत भेजी थी कि मौसम का मिजाज बदला तो लगा जैसे आज मौसम बेईमान है पड़ा। आसमान में छाए हुए बादलों को देखकर वह मुस्कुराया और सोचने लगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करें। उसने तो कागज कलम उठाई और पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मैं शायर तो नहीं जो शब्दों का जादुई जाल बुन सकूं, पर सच तो यह है कि मेरा वजूद तुमसे ही है। यह जिंदगी और कुछ नहीं, बस एक प्यार का नगमा है जिसे हम दोनों मिलकर गुनगुना रहे हैं। तभी खिड़की से के बाहर से एक हवा का झोंका आया, मानो उसके आने की आहट लाया हो। सचमुच आने से उसके आए बाहर और देखते देखते फिजा बदल गई। उसकी एक झलक पाते ही शर्म के मारे बादलों की ओट में

छुप गए सारे नजारे। उसने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखा और हौसले से कहा, तुम पूछती हो ना कि मेरे दिल में आज क्या है, तो सुनो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी आम दुनिया में नहीं बल्कि झिलमिल सितारों का आंगन जैसी किसी मखमली जन्नत में रह रहे हैं। ये प्यारी सी इबारत हमने भेजी थी आपको और इस इबारत के साथ आपने भी बहुत सारे जज्बात लिख डाले हैं हमारे साथ में, और उन जज्बातों में बहुत सारी मीठी मीठी बातें भी हैं। जैसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बेईमान मौसम और लहराते बादल के बीच हवा के झोंकों से अपनी इजराहे मोहब्बत की बात जो किसी के आने के साथ बाहर छा जाए और फिर उसी का हाथ पकड़कर आंखों से आंखों और दिल की धड़कनों को सुनना एक नई दुनिया में ही ले जाता है जो जन्नत से कम नहीं होती। और इस बात को लिखते हुए हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज हम गीतों के बजाय अपनी इबारत लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी कलम कितनी खूबसूरत है ये इस बात से प्रदर्शित होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मौसम का मिजाज तो मत पूछिए साहब, गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर है और उस पर आज से नौ तपा शुरू हो गए हैं, देखिए गर्मी कहर ढाएगी, फिक्र की बात नहीं, गर्मी कितनी क्यों ना हो, आइए विविध भारती की रेल पर और तय करिए सुरीला सफर, हो जाओ।

पर आज से नौ तपा शुरू हो गए हैं, देखिए गर्मी कहर ढाएगी। फिक्र की बात नहीं, गर्मी कितनी क्यों ना हो, आइए विविध भारती की रेल पर और तय करिए सुरीला सफर। हो जाओ ठंडे गीतों की बूंदों से सराबोर। बिल्कुल सही बात है, हमारा सफर भी तो साथ में यूं ही कट जाता है ना। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, आपकी वजह से हम गर्मी का एहसास भूल जाते हैं और विविध भारती के सुरीले सफर में रम जाते हैं। सबका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और सफर कट जाता है। एक घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता। बहुत अच्छा उपाय है। हाँ, ये उपाय तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा है इस गीत के लिए, जो गीत मैं आपको पहला गीत सुनवाने वाली हूँ, वो लिख रहे हैं कि गीत ऐसा लगता है जैसे कोई अपना इंसान धीरे से दिल को समझा रहा हो कि जिंदगी जिंदगी भागती जरूर है, लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत चीज रिश्ते और यादें होती हैं। इस गाने की सबसे प्यारी बात यह है कि ये मोहब्बत का शो नहीं, सुकून बनाकर पेश करता है। ना दिखावा ना बड़ी बातें, बस एक सच्चा एहसास है कि अगर साथ अपना हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। बहुत सही बातें आपने लिखी हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सुरीला सफर। और सुरीला सफर का ये पहला गीत आपको सौंपने से पहले आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम के प्रत्येक गीत को हमने लिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को आप सबने सुना है, लगभग 6000 गाने हैं और उन 6000 गानों में से कुछ गाने चुनकर हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो हम आपको दो प्रश्न सौंपकर इस गीत के साथ जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है, जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वह गीत किस गीतकार ने लिखा है, उस गीतकार का नाम बता दीजिएगा। बस इतना ही सरल सा प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न ये है जो कि पूरे कार्यक्रम में आप साथ में चला सकते हैं। आप बस ये बताते जाइए कि हो सकता है मेरे सुनवाए गए गीतों में से या फिर जो गीत अभी हमने नहीं चुने हैं उनमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ कौन सा गीत है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी पसंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों में से बताइएगा जरूर, और सुनिए ये गीत और बताइए इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे शोर फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक ने लिखा कि इस गाने के गीतकार हैं संतोष आनंद, जो इतने आनंद से गाने लिखते हैं कि श्रोता को संतोष हो जाता है सुनकर। बिल्कुल सही बात है। हमारे दूसरे श्रोताओं ने भी इसका उत्तर दिया है और कई लोगों की भारत में जो उन्होंने गीत पसंद किए थे वह उन गीतों में से एक है। और हमारे श्रोता ने लिखा है संतोष आनंद जी जो बहुत कम में ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत उनका फेवरेट गीत है, तो हमें बहुत खुशी है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके पसंदीदा गीतों में से यह गीत है और जब भी सुनते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। जीवन की सच्चाई यही है और सच्चाई के साथ अगर अश्रुधारा आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि ये जो गीत हैं ये बड़े खूबसूरत से हैं और इन गीतों में से उन्होंने कई सारे गीत पसंद किए, पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद जो गीतकार हैं ये हमारे पास के ही पिलखुआ कस्बे के रहने वाले हैं और व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं ये उनसे और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। कितनी अच्छी बात है ना, आप सब एक अच्छे महान व्यक्तित्व से मिल पाते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत सारे गीत पसंद हैं और जिंदगी की फिलॉसफी की व्याख्या करता है ये गीत। लगभग सभी गीतों की महफिल की जान होती है। ये गीत बहुत खूबसूरत है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत अच्छा संगीत दिया है इस गीत को। और हमने आपसे पूछा कि आपके पसंदीदा गीत कौन है, तो अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट आप डालते जाइए, शायद कभी कहीं किसी रोज़ हम आपके गीत बजवा सकें। और हमारे

0: ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इन फिल्मों के हिसाब से। मेरे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर आज संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीत ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज महान संगीतकार जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि भी है। आज भी इस महान संगीतकार का संगीत हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता इस इबारत को पढ़कर बहुत खुश हो गए और उन्होंने लिखा कि वह सुनने वाले नहीं थे, लेकिन उन्हें इबारत पढ़कर लगा कि क्यों नहीं सुन लिया जाए, प्रोग्राम सुनो तो परेशानी कम हो जाएगी। देखिए, संगीत और रेडियो जो है वो आपके जीवन की कई सारी चिंताओं को दूर कर सकता है, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी कविता बनाई है कि आसमां में छा गए बादल तो मौसम का मिजाज बदल दो, कागज कलम उठाओ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, शायर नहीं तुम जादूगर हो, शब्दों का जादुई संसार बुन दो, जिंदगी का गीत गुनगुना लो, प्यार का नगमा लिख दो, हवा के झोंके के साथ बहार आई है, आंखों से दिल की बात कह दो। और जब इतनी अच्छी बात कही है तो अगला गीत सुनवाना बनता है, और अगले गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं। बस इतना बताइएगा, ये जो अगला गीत आप तक आ रहा है, इस अगले गीत के गायक कलाकार कौन है? और बहुत खूबसूरत सा गीत है, और बस बताती रहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन सा है आपका। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और बतानी है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म, जो संगीत की यात्रा शुरू की, उसकी पहली फिल्म कौन सी है बताइएगा जल्दी से। पहली फिल्म का नाम बता दीजिए जो उन्होंने पहली फिल्म बनाई है, और साथ ही इस गीत के गायक कलाकार।
1: मेरे दिल में आज

हम सुन रहे थे ये गीत दाग फिल्म से साहिर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इस गीत को गाया किसने, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म दाग का ये गीत है जो सही लिखा है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। गायक हैं आभास कुमार गांगुली, आभास कुमार गांगुली मतलब किशोर कुमार। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं से हमने एक प्रश्न और पूछा था कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि एलपी की पहली फिल्म पारसमणि 1963 की, इसी से उन्होंने डेब्यू किया था। जी, बाबू भाई मिस्त्री की ये फिल्म जिसने उनके जीवन के इस संगीतमय जीवन के इस करियर की शुरुआत की थी। और उसके साथ ही जो हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप सभी ने बहुत सटीकता से बहुत अच्छे से दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर हमें भेजा करते हैं, तो हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मौसम हमें नई परिभाषा चुनने का सुख देता है। बदलते मौसम के साथ मन की गांठें बदलती हैं, खुलती रहती हैं। बर्फीली झील पर कोई बादल सरक कर पूरे वजूद पर छा जाता है तो लगता है खत लिखूं, मगर कागज कलम हाथ में आते ही सब भुला जाता है। जीवन का सार बस इतना ही है कि यह प्यार का नगमा है। जीवन का सच्चा सुख छोटी छोटी बातों में है, एक मुस्कान, शांति का पल और प्रियजनों का साथ। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है ना, और ऐसा ही साथ हम सबका बना रहे ये प्रार्थना भी हम ईश्वर से करते हैं। हम आपको अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं, और इस गीत को सुनवाते सुनवाते बस एक प्रश्न मन में आता है कि एक और गाना, यानी ये गीत नहीं है वह, लेकिन एक गीत है जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने गुरु को समर्पित किया है, उसमें उन्होंने उस अपने उन गुरु का नाम भी लिया है, तो जरा याद करें और बताएं कि कौन सा गीत था और किस गुरु के लिए वो समर्पित किया गया, जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत है आप सुनिए और बताइएगा कि ये आवाज कौन सी है, अगर आप गायक को पहचान पा रहे हैं तो गायक को पहचानिए भी। और दूसरा प्रश्न एक और हमने आपके साथ रखा है, वो बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया और उन गुरु का नाम क्या है।

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमने कहा था कि अगर आप गायक की आवाज़ को पहचान लें तो हमें ज़रूर बताएं। तो आपने गायक कलाकार की आवाज़ को पहचाना और बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये जो गायक कलाकार हैं वो शैलेंद्र सिंह हैं। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि एक गुरु को एक समर्पण दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा, जिनका नाम उन्होंने एक गीत में प्रयोग किया, तो वो गीत कौन सा है? तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना कि लक्ष्मीकांत प्यारे जी के गुरु का नाम एंथनी गोंसाल्विस है, जिसका जिक्र अमर अकबर एंथनी फिल्म में माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस इस गीत के साथ हुआ है। ये बात हमारे श्रोताओं ने पहचानी है और आपकी इस पहचान के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ज्ञान इतना अच्छा है। और हमारे श्रोता बड़ा दुख लिख रहे हैं कि इंसान को किसी भी मौसम में चैन नहीं है। गर्मी में हाय, बरसात हो तो बहुत बारिश हुई है, और ठंड हो तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो देखिए, असर तो पड़ता ही है हमारे ऊपर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और उन्होंने इस बात को लिखते हुए बताया है कि एंथनी गोंसाल्विस जो हैं वो उनके

वायलिन के गुरु रहे हैं, प्यारे लाल के वायलिन गुरु एंथनी गोंसाल्विस, जो 50-60 के दशक में वो इंडिया के फेमस म्यूजिक अरेंजर थे और हर वाद्य यंत्र बजाते थे। जब अमर अकबर एंथनी के गाने के बोल लिखे जा रहे थे तो प्यारे लाल जी ने अपने गुरु को ट्रिब्यूट देने के लिए ये गाने के बोल में एंथनी गोंसाल्विस नाम डलवा दिया। कितनी बढ़िया बात है कि कोई अपने गुरु को कितना प्यार कर सकता है, और यही बात यहाँ पर आई है और इतनी खूबसूरती के साथ आप सबने सजाया है। और अब हमारी इबारत को लेकर हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बदलते मौसम का प्रियतम की याद आना प्रवास जनित विरह या ऋतु विरह है, जहाँ प्रकृति का परिवर्तन प्रेमियों के हृदय में छिपी उत्कंठा को और अधिक तीव्र कर देता है। इसे ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन उस शाश्वत मिलन की तड़प को और बढ़ा देता है। विरह की पीड़ा प्रेम की पूर्णता और गहराई का प्रमाण बन जाता है। बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम का मिजाज जब बेईमान हो जाए तो आसमान में बादल भी मोहब्बत का इजहार करते प्रतीत होते हैं। खिड़की से आती हवा का झोंका और कागज कलम को छूता है और दिल अपने आप प्यार का नगमा लिखने लगता है। फिजा की मैं ऐसी मिठास घुल जाती है कि छुप गए सारे नजारे भी सितारों के आंगन में अपनी चमक बिखेरने लगते हैं। उस पल में प्रकृति प्रेम और एहसास मिलकर जीवन को एक सुंदर कविता बना देते हैं। कितनी अच्छी बातें आप लिखते हैं, और इन्हीं अच्छी बातों के बीच में मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। अगला गीत बड़ा प्यारा सा है। आप उस क्रम को मत तोड़िए जो मैंने आपको शुरुआत में दिया था कि आपका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन है, कौन सा है, आप ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि ये गीत जो है वो दिल को छूते हैं। अब मैं अगला गीत आपको सौंप रही हूँ। इस गीत के साथ में भी दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि ये जो गीत है, इस गीत को किस फिल्म से लिया गया है। जो गीत आप सुनने वाले हैं उसकी फिल्म का नाम बता दीजिएगा। और अब दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कितने फिल्मफेयर अवार्ड मिले हैं, कितने फिल्मफेयर अवार्ड उन्होंने जीते हैं संगीतकार के रूप में, बेस्ट संगीतकार के रूप में कितने मिले हैं, जल्दी से बताइएगा। और ये भी बताइए कि इस गीत के फिल्म का नाम क्या है।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये सुंदर सा नगमा, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके गीतों के साथ में, और हमने दो प्रश्न आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न था कि ये जो गीत है वो किस फिल्म से है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लोफर फिल्म से है। और आप सब इस गीत को पसंद करते हैं ये सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। पर हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था, दूसरा प्रश्न ये था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार के रूप में कितनी बार फिल्मफेयर अवार्ड मिले, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया 7 बार। और बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपने हमें उत्तर दिए हैं। जैसे आपने हमें बताया कि 1964 में पारसमणि फिल्म के लिए, 1968 में मिलन के लिए, 1970 में जीने की राह के लिए, 1978 में अमर अकबर एंथनी के लिए, 1979 में सरगम के लिए, और 1979 में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, सरगम के लिए, 81 में कर्ज के लिए, कई सारी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिले। हालांकि 25 बार नॉमिनेट हुए और जीते 7 बार, ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। एक और प्रश्न मेरा आपसे था अगला गीत सौंपने के पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले ये संदेश जो है वो सुन लें और उसके बाद वापस जुड़े इस धारा के साथ।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को

0: अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया, शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और इसी सफर में हम यात्रा कर रहे हैं बहुत सुंदर नगमों के साथ। और उन्हीं नगमों में हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी इबारतें लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आया मौसम सुहाना रे, ठंडी ठंडी हवा का तराना रे, कभी धूप कभी बारिश आई, प्रकृति ने सुंदर छटा सजाई, पेड़ पौधे झूमे प्यारे, मौसम लगे सबसे न्यारे। और ये बात लिखने के बाद उन्होंने बड़ी प्यारी सी मौसम के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीली प्रस्तुति सुरीले गीतों से श्रोताओं को बाहर तेज धूप के बावजूद हमें मौसम का मिजाज जरूर बदला लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। जी, हमारी एक श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी भेजी है कि आज के फनकार कार्यक्रम में मैंने सुना कि लक्ष्मीकांत जी का जन्म लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था, इसीलिए परिवार वालों ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया। आज आपने सुबह आज के फनकार सुना, ऐसे ही एक और कार्यक्रम है 7:45 पर आएगा स्मृतियों के स्वर। भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये दूसरा भाग है। आज शाम को 7:45 पर जरूर सुनिएगा स्मृतियों के स्वर। और आप जो विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं, सुरीला सफर सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं, तो इन्हीं उत्तरों और प्रश्नों के बीच में मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि आप बता सकते हैं क्या कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं उन्होंने सबसे अधिक गीत किससे गवाए हैं, यानी कौन सा गायक था जिन्होंने सबसे ज्यादा गीत गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए, आप जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूं, तो जरूर से बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं तो बता दीजिए कि इस ये जो गीत है ये किसने लिखा है, यानी गीतकार कौन है। दोनों प्रश्नों के उत्तर जल्दी दीजिए और सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे जीने की राह फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि आनंद बख्शी हैं। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक गीत किसने, यानी किसने, किस गायक या गायिका ने उनके लिए गाए हैं। तो हमारे श्रोताओं ने अंदाज़ा लगाया है कि कोई कह रहा है कि लता मंगेशकर ने ज़्यादा गाए हैं और कोई कह रहा है मोहम्मद रफ़ी ने ज़्यादा गाए हैं। तो आप भी विचार कीजिए, इस बात पर विचार करते रहिए, ज़रूर से ढूंढिएगा किसने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। हालांकि ऐसा कहते हैं कि लता मंगेशकर ने सबसे ज़्यादा 700 से अधिक गाने गाए हैं उनके लिए, ऐसा कहा जाता है। पर फिर भी आप भी खोजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न है तो प्रश्न तो रहना ही है जीवन में, ये प्रश्न रहना चाहिए ताकि आप उसका उत्तर ढूंढ सकें। ऐसा भी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने लगभग 712 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए, बहुत अच्छी बात है। और अब ये जो गाने और इन सब की जो बात है, इन सब के साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं उनके साथ में, यानी दोनों ने साथ में आखिरी कौन सी फिल्म थी जिसके लिए संगीत दिया था, जरूर से बताइएगा। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की साथ में आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और अगला गीत जो है उसके गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत। अगले गायक कलाकारों के नाम बताना है और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आखिरी फिल्म जो साथ में उन्होंने की थी, जरूर से बताइएगा।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत को लेकर बहुत सारे उत्तर दिए हैं और लिखा है कि दो रास्ते फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि काजल लगाए दिन में रात हो गई ये तो बजना ही था, फिल्म दो रास्ते का युगल गीत जिसके बाजार में आने पर तहलका मच गया था। बिल्कुल सही बात है। और हमारा एक श्रोता लिख, एक लड़का मुझे देखकर ये गाना गा रहा था, मेरी शादी हो गई, उसके दोनों

ये भी हो गए। 1994 की बात है, आज बरबस याद आ गई और हंसी भी आ गई, साथ में आपके पति देव भी मुस्कुरा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे परिवार को कितना खूबसूरत एक बहुत प्यारा सा समय देते हैं। और हमने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो अंतिम फिल्म है दोनों के साथ में, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अंतिम फिल्म मेरी बीबी का जवाब नहीं 2004 में आई थी, जो लक्ष्मीकांत के 1998 में निधन के बाद 6 साल बाद रिलीज हुई। यह फिल्म काफी समय से अटकी हुई थी और इसमें प्यारेलाल ने संगीत संयोजन पूरा किया। बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। आज हमारे बहुत कम कमेंट्स पड़े जा रहे हैं, ऐसा भी हमारे श्रोता ने शिकायत की, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आज हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं, कमेंट लिए ही नहीं, आपने लिखे भी नहीं। तो चलिए हम अब चल रहे हैं आज के अंतिम गीत की तरफ। आप सबने अपना पसंदीदा गीत बताया था और हम अपना पसंदीदा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत बहुत प्यारा सा है और ये गीत हमने लिया है जीवन मृत्यु फिल्म से। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

और इसी के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं समाप्त होता है, पर उसके पहले हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम सब मानवीय जीव जंतु, समुद्री प्रजातियां, पेड़ पौधे सब कुदरत के गुलाम हैं। हमें कुदरत के नियमों का पालन करना चाहिए, गर्मी ठंड बारिश इन सब का ध्यान रखना चाहिए और जो कुछ कुदरत दे रही है उसका हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे सभी साथियों का भी यानी सभी प्राणियों की मदद भी करनी चाहिए। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, जीवन में शांति हो, सुकून हो, ये प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ कार्यक्रम सुरीला सफर से। नमस्कार।

वो समय है जब परीक्षाओं के नतीजे आने लगते हैं। कुछ लोगों का जश्न होता है, कुछ का दिल जलता है। उनके नंबर मन के मुताबिक नहीं होते और उनका दिल टूट जाता है। अफसोस है कि हमारे यहाँ बच्चों पर सबसे ज्यादा अंक लाने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे रेस में दौड़ने वाले घोड़े के मानिंद बन जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए और बच्चों के साथ बैठकर रिजल्ट डिस्कस कीजिए। उन्हें बताइए कि परीक्षा के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

जैसा कि हमने आपको समझाया, परीक्षाओं के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते। ये सच है कि 12वीं में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने में आसानी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं के नतीजों के आधार पर लोगों का करियर डिसाइड हो जाता है और उनकी जिंदगी का फैसला हो जाता है। बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है और उसके आधार पर वो अपना प्रदर्शन करता है। किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ कतई नहीं की जानी चाहिए। ये मानना चाहिए कि हमारे बच्चे की अपनी एक यात्रा है और दूसरे बच्चों की अपनी अलग यात्रा है। किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई में विषयों का

अपना प्रदर्शन करता है। किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ कतई नहीं की जानी चाहिए। ये मानना चाहिए कि हमारे बच्चे की अपनी एक यात्रा है और दूसरे बच्चों की अपनी अलग यात्रा है। किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई में विषयों का निर्धारण भी उनकी दिलचस्पी के आधार पर ही होना चाहिए, न कि दुनिया में क्या चल रहा है या दूसरे बच्चे ने कौन सा विषय लिया है, इसके आधार पर इस बात का निर्णय किया जाए। अगर आप बच्चों को दबाव डालकर कोई विषय दिलवा देते हैं तो मुमकिन है कि इसका असर उसके प्रदर्शन पर पड़ेगा और हो सकता है कि आपके इस्तेमाल से उसकी जिंदगी बेकार हो जाए।

दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जब विषय चुनने होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उनकी दिलचस्पी क्या है, न कि दबाव डालकर उनकी रुचि के उलट विषय आपको उन्हें सिलेक्ट करवा देना चाहिए। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी जैसे नाम मात्र के विकल्प नहीं रह गए हैं, बल्कि बच्चों के सामने तरह तरह के क्षेत्र हैं और कोई भी बच्चा अपने मन चाहे क्षेत्र में जाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। पर सवाल ये है कि उसके भीतर उस विषय की दिलचस्पी हो, कुछ करने का मादा हो, दुनिया को ये दिखा देने की जीत हो कि उसके भीतर प्रतिभा है और वो लीक से हटकर काम कर सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठकर मिलकर डिस्कस करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उन्हें अपने मन पसंद क्षेत्र में आगे

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर

0: से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबे के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान

0: 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले दो दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गो में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे बसंत बहार फिल्म का ये गीत, भीमसेन जोशी मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है जलदीप फिल्म से। सुधा मल्होत्रा, स्नेहल भाटकर ने इसे गाया है, कैफ इरफानी ने इसे लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसे संगीतबद्ध किया है।

एहसान सहारों का मत ले, एहसान सहारों का मत ले, खुद अपने मन को दीप बना, खुद अपने मन को दीप बना, तू रस्ते की हर ठोकर को, तू रस्ते

बालक है तू मालिक है, तू बालक है तू मालिक है, तेरी हंसी में लाख सवेरे है, तेरी हंसी में लाख सवेरे है, दो हाथों में तकदीर लिए, दो हाथों में तकदीर लिए, तू सबका भाग बनाता सबका भाग बनाता था, तू हंसता था तू गाता।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं,
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे चल रहा है, आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज में।

हमारा फिल्म का यह गीत आशा भोसले की आवाज में शेवन रिजवी ने इसे लिखा और एआर कुरैसी ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चल रहा है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी के हैं बोल, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ।
4: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर निरत करत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्नाथ राम तत थई राम तत थई।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आज का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जो कि है फिल्म फंटूश से आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देवर्मन का है संगीत।

0: सगी सहेली
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: आरती जी स्वागत है आप सभी का।
2: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपका भी है। और आज हम दोनों पहली बार शायद
1: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
2: और हम सभी अपने श्रोताओं को सभी सखियों को सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, ये धुन कहती है दौड़ते रहना है, खेलते रहना है, उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस खेलते जाना है
1: जी।
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है, जो हमारे जो शांति है उसके लिए बहुत जरूरी होता है
1: जी।
2: और विधि इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की, जो कहानी है बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं
2: जी। हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ, फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ, सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकले। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं।
2: बिल्कुल, आज हम बिहार के व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
1: जी, तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया हाँ। हमने नहीं खाया है। तो
2: रसिया हम सुनते भी हैं
1: जी,
2: जो एक
1: बिल्कुल
2: गीत भी होते हैं
1: जी,
2: लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, तो शायद खाने वाला भी बड़ा
2: मीठा होता है।
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित। कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
3: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में सुन

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और

0: की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। अपनी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई, किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: हैं? ई का हुआ? हाय राम, दैया रे दैया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई।
2: हैं?
1: लागत का है सच्चो।

0: मर गई। हाय, हत्या का पाप बहु पे चढ़ गया अम्मा जी।
1: माँ जी, ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना। हम तो रसोई ना बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ,
2: कहती तो ठीक हो तुम सब। अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए, तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। अरे बहू, ये क्या कर डाला है?
0: अब इब का हुई अम्मा जी। हाँ, कहो तो पंडित जी को बुला लें हम।
2: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ, जाओ जल्दी से, जाओ पंडित जी को बुला लो।
3: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
4: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
3: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मनसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्नु की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
2: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है, बताइए जरा।
4: हाँ हाँ, पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। ये हाँ, अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिश्रानी, ये हुआ कब?
1: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
4: 7 बजे सुबह।
3: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
4: हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
2: तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
3: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा।
4: रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
2: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
4: किया क्या जाए? हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी, तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, बस। हरे कृष्ण।
5: हाँ हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
2: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए?
3: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा।
4: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की

0: माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण।
1: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
0: रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे, रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया? बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही हैं? इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण।
2: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
0: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण।
1: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा?
0: अरे, कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
1: अरे बाप रे बाप, इतना सामान! अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हैं?
0: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई

0: रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है। अगर तुम्हें ये अखरता है तो ना करो, मैं चला।
1: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है?
0: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
1: अच्छा।
0: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
1: ऐसा?
0: हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
2: हाँ, ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो।
0: अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए।
3: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
4: अरे अम्मा जी।
1: हाँ।
4: ये तो
1: क्या हुआ, बोलो तो।
2: अरे हुआ का,
4: अरे बताओ क्या बताए अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
0: क्या? बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
2: और वो भी भाग गई।
1: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और

0: तो आरती स्वागत है फिर से सखी सहेली में।
1: हाँ।
0: और पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया, देखो रूठा ना करो, अब तक मान गए होंगे।
1: जी हाँ।
0: अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर सकते हैं। पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं।
0: जी।
1: तो इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया।
0: और
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा।
0: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता,
1: बिल्कुल
0: के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
0: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती देखिए, खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है,
1: वो
0: पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है,
1: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो, और दिमाग भी उसे सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मज़ेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
0: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पर कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे
1: अच्छा।
0: तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले जाते थे।
1: इस खेल की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
1: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपको जब सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने में
0: कैलोरीज यहाँ पे खत्म कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
1: वाह, बहुत बढ़िया बात।
0: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार करो और हार जाओ।
1: जिस पे पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है।
0: हाँ,
1: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
0: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
1: तो

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, यानी कहीं घूमने जाना है।
1: ठीक है, तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं। और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
1: बड़ा अच्छा लगता है कि ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब साथ में खा रहे होते ना तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वही चीज खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आरती एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशी हमारे तक आ जाती है।
1: और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
0: जी बिल्कुल, और सबके साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना, मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीज़ें उनको ज़रूरत लगती है, उनकी दवाइयाँ, सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं। तो जो भी

0: हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयाँ ये ज़रूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनके लिए जो दवाइयाँ रहती हैं वो आप ज़रूर अपने साथ में लेकर चलें, बहुत
1: लेके
0: ज़रूरी है।
1: चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है,
0: क्या
1: वो होता है टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
0: सबसे पहला काम,
1: सबसे पहला काम, अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहाँ जा रहे हैं वो सब चीज़ें अच्छे से पता कर लें। और सामान्यतया जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है, और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं,
0: हाँ।
1: और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है।
0: अच्छा।
1: ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाएं।
0: बिल्कुल।
1: तो पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
0: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई है, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए
1: जी।
0: इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े होते हैं कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए, ये तो।
1: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको बहुत संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं, तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, ये सही कहा।
1: जाने कब कहाँ कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीज़ें
0: जरूर
1: होना चाहिए।
0: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है, पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे, जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत ज़रूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखिए, उन्हें चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
1: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कन्फर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ORS की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतया गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
0: बिल्कुल।
1: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हों तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, डकौर, मतलब जिन्होंने जहाँ जहाँ लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
1: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार, जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
0: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी

0: कर लें, क्योंकि अगर आप ये सहूलियतें रहेंगी ना, तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहाँ से भी आप उतरे, जो जिससे भी जा रहे हैं, तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम
1: समय
0: कर
1: भी
0: सकते
1: बच
0: हैं,
1: जाएगा।
0: बिल्कुल आराम
1: बिल्कुल
0: कर
1: सही है।
0: सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं, क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी ज़रूरी होती है।
1: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीज़ें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज़ तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहाँ के भोजन, इनका
0: हाँ
1: आनंद ज़रूर लीजिए। जैसा
0: बिल्कुल।
1: मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें, तो विदेश की यात्रा में एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
0: बिल्कुल
1: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका हो। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई
0: ध्यान,
1: व्यवस्था करके,
0: बिल्कुल
1: अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी
0: जी।
1: व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर के तरफ ही रखते हैं, ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और वो सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल बहुत जरूरी है।
1: जी
0: तो विधि एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है, जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था, और जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे।

0: यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरी परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे। और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
0: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, ये तो सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं।
1: हाँ।
0: अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है, तो विशेष ख्याल रखें। और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। रात्रि में यात्रा करने से बचें और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
1: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए। और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
0: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ।
1: अच्छा।
0: बड़ा आनंद आता है,
1: सच में अच्छा लगता है क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
0: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वहीं मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे तलना होता है। तो घी, जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोए तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है, और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें। इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उलना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है, उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए, और इसे तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं, और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची, जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए, और इलायची का पाउडर डालिए, और बहुत अच्छी तरह से इसको लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं, ये स्वादिष्ट रस आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
0: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा,
1: बहुत अच्छा लगेगा।
0: इतना आइसक्रीम जैसा गले में सूदिंग सूदिंग,
1: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते हैं ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
0: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है, ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं अरिस्तान के हिसाब से। तो हमने वाले पकवानों की तो बात कर ली है, और अब हम क्या एक गीत गा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं गीत
0: जी।

0: तो आरती,
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है, हाँ। कहा है जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको

0: परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं, वो तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
1: बिल्कुल। हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है।
0: हाँ, विधि है।
1: वी विक्ट्री विधि। सो वो कहती है कि क्या क्यों कहूँ, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूँ, हंसू चुकी तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए जिंदगी। खुश रहने के लिए सखी सहेली सुनते रहिए,
0: सुनते रहिए।
1: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ, अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वह है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ, तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं, और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है, इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो, तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स, जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी, आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी जी।
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना, सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
0: जी,
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को

0: पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला?
1: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
0: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की।
1: याराना फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है?
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं? खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीज़ों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है
0: सप्लीमेंट
1: सप्लीमेंट्स, मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है? मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीज़ें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं

0: जरूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते। ये हम करते हैं, और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज़ एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है। तो उसमें अब हमारा जो विकास है, दिमागी या शारीरिक विकास, वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
1: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन, जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं, और मन से ही हो जाते हैं कई बार। तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है, और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते होंगे।
0: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है,
1: जी
0: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए। हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
1: जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती
0: हाँ,
1: हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
0: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
1: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना
0: हाँ
1: है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय, लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है, काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायराइड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान।
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3, T4, TSH का।
0: जी।
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3, T4, एक होता है फ्री T3, T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3, T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3, T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा।
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3, T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
0: अच्छा।
1: फ्री T3, फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है। हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर

0: चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी,
1: अच्छा
0: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स, ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है,
1: अच्छा,
0: और ये अनिवार्य है।
1: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया,
0: पॉजिटिव
1: जैसा कि आपकी यूनिट के बाहर या कम,
0: हाँ, रेंज के बाहर,
1: रेंज के बाहर, तो आप क्या मानती हैं उसको?
0: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
1: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
0: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
1: जी,
0: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: जी, जी जी,
0: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि, हाँ, ये लेवल क्या है,
0: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
1: जी जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार,
0: काला बाजार,
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने, तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज़्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी जी,
1: विटिलिगो मतलब सफेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज्यादा है, मतलब लूज मोशंस। अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है।
0: जी।
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम होगा, त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
0: इसका
1: क्या है,
0: किधर है।
1: एग्जैक्टली, रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी, जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है
0: जी,
1: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायराइडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है
0: जी।
1: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या चिकित्सा है या उसका जो हाँ क्योर है वो जल्द हो जाएगा।
0: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है, लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
0: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये।
1: हाँ।
0: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
1: जरूर,
0: लेकिन प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। और चित्रलेखा, फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकेंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं, अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे, डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल।
0: जी,
1: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं

0: वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े हैं। चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना।
1: जी जी
0: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है।
1: जी जी
0: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान
1: जी।
0: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
1: फोबिया,
0: हाँ धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की। एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
1: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
0: तब क्या, नहीं तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
1: सब ठीक है,
0: सब ठीक है। तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल
1: जी।
0: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
1: फिजिकल,
0: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड ये वो वाला ना,
1: सारी विषैली चीजें,
0: हाँ
1: तत्व जो है अंदर रहते हैं।
0: हाँ तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी, ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
0: हाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
1: जी जी।
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं
1: जी,
0: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का।
0: परिवार का अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
1: हेरिडिटरी कैरेक्टर,
0: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है
1: जी,
0: उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए।

0: वो लेवल में रहेगा, और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
0: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
1: बैजू बावरा।
0: बैजू बावरा
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का ये नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के, गूगल पे सर्च करके, सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए। इतना आसान नहीं है, मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षण जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो, ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात है।
1: दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है। वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा। यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग, मतलब
0: पसीना
1: पसीना बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा,

0: हाइपो में उल्टा होगा, तो कैसे सिलेक्ट करते कि कहाँ पे किसको देना है?
1: लक्षण देखकर।
0: लक्षण देखे, लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
1: एक इंडिकेशन होता है,
0: एक इंडिकेशन। जैसे थायरॉक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरॉक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
1: थोड़ी
0: आयोडीन
1: मेहनत
0: का
1: करने पे ही वो थक जाता है,
0: थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
1: क्या बात है,
0: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरॉक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल। आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा,
1: मायूस
0: मायूस सा बेचारा, हर एक चीज पे, थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीजें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरॉक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरॉक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है। हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है। और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या क्रिश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
0: है, क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
1: सामान्य अवस्था में आ रहा है।
0: सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है? डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले
1: जी,
0: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है।
1: जी जी। और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
0: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत, क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयाँ कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का, मतलब आहार का, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूँ तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई जरूरत नहीं है। आप रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसमी एक जो
0: मौसमी
1: फल है
0: खाना,
1: वो खाना चाहिए,
0: खाना हो या फल हो ये खाइए। और पानी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए। इससे जब ज्यादा आप पानी पियोगे, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आप की खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूंगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊंगी?
1: बहुत प्रेशर पड़ेगा।
0: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
1: ओहो,
0: यस, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा।
1: तो ये सावधानी बहुत जरूरी है रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार
0: उतना ही,
1: लेकिन आहार में ये बात

0: तो मानती है आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें।
1: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
0: जो
1: बड़ी
0: चाइनीज फूड में
1: खतरनाक
0: ज्यादा
1: है।
0: इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही बोला आपने।
1: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए।
0: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए,
1: हाँ कम
0: इतना तो
1: कर
0: कर ही
1: दीजिए,
0: सकते।
1: मैं ये
0: जी
1: भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
0: कंट्रोल।
1: कंट्रोल करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा।
0: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
1: हाँ हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या? मन देता है।
0: जी
1: मन
0: जी
1: को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
0: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए यहाँ पर
1: एक
0: चलते
1: अच्छा सा
0: चलते।
1: गाना चलते चलते मैं हूं।

0: लाता कदमों को थिरका था नगमा आपने सुनवाया जुबरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज में। देखिए समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम, चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर यह कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। तुम्हें बस तुम्हें साथ लेकर चलना है जीवन की हर राह पर, हर कदम पर, क्योंकि अधूरे हैं तुम्हारे बिना सारे सपने, क्योंकि तुमने रंग भरे हैं जीवन के हर खांचे में, तुम्हारे होने से गीत बन गई है ये जिंदगी, सुर खोले हैं तुमने अपनी मुस्कानों से।

बुद्ध की प्रतिमा जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतीकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमैन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 to 2009। And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से, उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू
1: हिज क्रेडिट। भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वेयर ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
1: विजय कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
2: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: Ramaswamy Palaniswamy, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।

0: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
1: Shri
0: guidelines.
1: Shri Piyush Pandey, Marnopranth, Kala Vigyapan, Unki Patni Shrimati Neeta Joshi.
2: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
0: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
1: श्री विश्व बंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
2: विश्व बंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
0: श्री विश्व बंधु वॉज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, एंड रिमेन सो ओवर 6 डेकेड्स।
1: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
2: भरत सिंह भारती, 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
0: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबिया तान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
1: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Badan.
2: Jaisalmer ki Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
0: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He got many opportunities.
1: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
2: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
0: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
1: श्री रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, साहित्य एवं शिक्षा।
2: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
0: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities.

0: 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir, and discovered 200 archaeological sites, and he directed 20 excavations.
1: Shri Nilesh Vinod
0: Ayodhya.
1: Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
2: Organ Man के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
0: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
1: Dr. Mahendra Kumar Mishra, साहित्य एवं शिक्षा।
2: लुप्त प्राय जनजातीय आवाजों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाजों को संरक्षण करने में चार दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
0: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University, and Russia's Academy of Sciences.
1: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, Kantha Embroidery.
2: Kantha, ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
0: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय कन्फरिंग ऑन हर द बंगश्री अवार्ड।
1: हरि माधव मुखोपाध्याय, कला थिएटर, उनके पुत्र श्री कृष्णेंदु मुखोपाध्याय।
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
1: श्री सत्यनारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
2: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
0: Under Shri Nuwal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
1: been supplied to the Indian Army. Shri K. Pajanivel, Khel, Silambam.
2: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है, इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजनीवेल।
0: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
1: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
2: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आगे आकर श्री पंड्या का सम्मान।
0: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
1: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya evam Shiksha.
2: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
0: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
2: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar kar niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek कि राष्ट्र ऐसे सेवकों का ऋणी है।
0: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
1: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत, कला गायन, उनके पुत्र

0: श्री गरी मेला अनिल कुमार।
1: अनिल कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बालकृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
2: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
0: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
1: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खासतौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
2: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
0: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
1: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरीय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
2: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also
0: श्रीमती दीपिका रेड्डी कला नृत्य।
1: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
2: श्रीमती रेड्डी वाज़ द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
0: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
1: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
2: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners.
0: श्री हरिचरण शाइकिया कला सत्रिया नृत्य।
1: सत्रिया असम की एक सुप्रसिद्ध कला और हरिचरण शाइकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं व्हीलचेयर पर जाते हुए, आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
2: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म्ड सत्रिय डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑल्सो ही परफॉर्म्ड द भरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
0: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री
1: 86 साल के शास्त्री जी
0: साहित्य एवं शिक्षा
1: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
2: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
0: Professor Shafi Shauk, Sahitya Evam Shiksha.
1: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी अंग्रेजी हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है प्रोफेसर शफी शौक।
2: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
0: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
1: Baldev Singh ji ne बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं।

0: एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
1: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाग मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी टैलेंट।
2: श्री युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री युमनाम बिशन भोर सिंह।
0: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
1: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
2: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
0: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
1: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
2: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
0: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में और खासतौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज्यादा उपन्यास, 40 से ज्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
1: श्रीमती शिवशंकरी कंप्लीटेड हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एज अ यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रिफ्लेक्टिंग हर अर्ली academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
2: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
0: Sridhar ji, Akashwani ke up mahanidheshak rahe aur vigyan ka एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
1: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
2: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
0: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में medicine के मानद professor हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM।
2: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा, समाज सेवा।
0: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
1: डॉक्टर सुशील अम्मा हैज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड एक्सटेंसिव रूरल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स अक्रॉस कर्नाटका इंक्लूडिंग एडल्ट लिटरेसी कैंपेन्स, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड महिला मंडल्स एंड वोकेशनल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, माइक्रो क्रेडिट इनिशिएटिव्स एंड पंचायत लीडरशिप डेवलपमेंट। शी हैज ऑल्सो वर्क्ड क्लोजली विद ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स।
2: श्री एन स्वामीनाथन, कला भक्ति संगीत।

0: तंजावुर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है.
1: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
0: Dr. Thakral, आयुर्वेदिक पद्धति के शल्य चिकित्सक हैं और भारत में क्षार सूत्र चिकित्सा के माध्यम से कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्मवेदन भी आगे बढ़ाई है.
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन. ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज. And his profile has been part of international conferences also.
2: Dr. Gopal G. Trivedi, Marnoprant, Vigyan Evam Engineering, unke putra Shri Raman Kumar Trivedi.
0: Zyada din nahi hue, 12 Mai ko hi aapka nidhan ho gaya tha. Dr. Gopal G. Trivedi एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं. पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमण कुमार त्रिवेदी.
1: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज.
2: श्री अरविंद वैद्य कला थिएटर.
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है. काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ.
1: श्री वैद्य फाउंडेड द नाट्य संपदा, हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी थ्रू विच ही प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन मोर देन 75 फुल लेंथ प्लेज. ईच वर्क कैरीड द क्वाइट वेट ऑफ डेडिकेशन, गैदरिंग रिकॉग्निशन अलोंग द वे. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Jujar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Jujar Vasi, IIT Bombay mein Professor Emeritus hain. Aur aapne micro electronics aur semiconductor aur solar फोटोवोल्टिक से क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है.
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टेक्स, ही स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस. ही हैज पब्लिश्ड अबाउट 200 पेपर्स इन लीडिंग जर्नल्स.
2: डॉक्टर नारायण व्यास, पुरातत्व विज्ञान.
0: डॉक्टर नारायण व्यास विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है. खासतौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव, सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है.
1: डॉक्टर व्यास वॉज एसोसिएटेड विद द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी, डोमेन एक्सपर्ट मेंबर इन नेशनल स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन कमेटी. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: 2019. Professor Gambir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
0: Gambir Singh Ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है.
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग. अ पैशनेट एडवोकेट ऑफ साइंटिफिक टेंपर एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ही लेड अ 6-year कंजर्वेशन मूवमेंट दैट वॉज अ ह्यूज सक्सेस.
2: श्री हैली वार, समाज सेवा.
0: और अब बारी हैली वार जी की. आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है.
1: Shri Vaur has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures.

0: most-celebrated work, the Omkar Living Root Bridge stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
1: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और राष्ट्रपति,
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
1: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay your attention, please. I request all the award winners
0: to
2: move towards your right side.
0: Second part of the ceremony. आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूलें. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप सुन रहे थे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवा रहे थे
4: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह 1 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है लीजिए प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत

अभी आप सुन रहे थे निमाड़ी लोकगीत FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका वाणे, और आज का हमारा क्रम है कुछ बातें कुछ गीत। तो करेंगे आपसे कुछ दिलचस्प बातें और सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत। लेकिन उससे पहले आइए आपसे पूछ लेते हैं सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए युववाणी। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बीमारियां हमें घेर लेती है। इन्हीं में से एक है थायराइड। इस विकार के बारे में जागरूकता लाने के लिए ही हर साल 25 मई यानी आज ही के दिन विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य थायराइड विकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, शुरुआती जांच को बढ़ावा देना और समय पर उपचार के महत्व को समझाना है। इस दिवस की शुरुआत 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इस वर्ष 2026 की थीम है प्रारंभिक हस्तक्षेप और निदान में देरी को कम करना। अगर थायराइड को जाने तो इसके दो प्रकार होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कम थायराइड, और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म यानी अधिक थायराइड। इसके परीक्षण के लिए TSH, T3 और T4 रक्त परीक्षण किए जाते हैं। दोस्तों, थायराइड असंतुलन का इलाज दवाओं और संतुलित जीवन शैली से संभव है। तो आप कब से व्यायाम और दूसरी सेहतमंद चीजों को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं? दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे क्रम की ओर। बातें तो कई होती है, लेकिन आज बात करेंगे उस सफर की जिसने भारत को धरती से आसमान और फिर अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से प्रयोग से शुरू हुई यह यात्रा चांद और मंगल तक पहुंच चुकी है। बात करेंगे उन सपनों की जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाया। दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया में आज सम्मान के साथ देखा जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। 1960 के दशक में जब दुनिया के बड़े देश अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ रहे थे, तब भारत भी एक सपना देख रहा था, ऊंची उड़ान का। और इस सपने को सार्थक किया भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। इन्हीं के प्रयासों से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा था, अगर हमें देश का विकास करना है तो अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग आम लोगों के लिए करना होगा। इसके बाद भारत ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की। इसके बाद 1969 में बना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो। शुरुआती दिनों में वैज्ञानिकों ने साइकिल से रॉकेट के हिस्से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए। उनकी मुश्किलें बड़ी थी, लेकिन उससे भी बड़े थे उनके हौसले। दोस्तों, भारत का पहला रॉकेट केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से छोड़ा गया। यह शुभारंभ था एक नए युग का।

दोस्तों, अब भारत अंतरिक्ष में अपने कदम मजबूत करने लगा है। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। इस उपग्रह का नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसके बाद भारत ने कई संचार और मौसम उपग्रह लॉन्च किए। इन उपग्रहों ने टीवी प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान और संचार व्यवस्था को मजबूत किया। फिर आया रोहिणी उपग्रह, जिसे भारत ने अपने स्वदेशी रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा था। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। धीरे धीरे भारत ने अपने लॉन्च व्हीकल विकसित कर लिए, जैसे SLV, ASLV, PSLV और GSLV। इनमें से PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को भारत का वर्कहॉर्स कहा जाता है। इस रॉकेट ने भारत और दुनिया के कई उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। अब बात भारत के सबसे चर्चित मिशनों में से एक चंद्रयान की। भारत ने वर्ष 2008 में अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया। इस मिशन ने चांद पर पानी के अणुओं की खोज की। यह खोज पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके बाद चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, हालांकि यह पूरी तरह सफल नहीं हो सका। फिर आया वह ऐतिहासिक पल जिसका पूरे देश को इंतजार था। 2023 में भारत ने लॉन्च किया चंद्रयान 3 मिशन। इस मिशन के तहत विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। यह सिर्फ विज्ञान की नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की जीत थी।

चांद पर तो तिरंगा लहरा दिया, अब इसके बाद भारत ने अपनी नजरें टिकाई मंगल पर और 2013 में लॉन्च किया मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम मंगलयान कहते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये थी कि भारत अपनी पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में उपग्रह पहुंचाने वाला पहला देश बन गया। इस मिशन की लागत हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी कम बताई गई थी, जिससे दुनिया भारत की तकनीक और कम लागत में बड़े काम करने की क्षमता को देखकर हैरान थी।

दिल में मार्स को लिए अब चलते हैं सूरज की ओर, क्योंकि अब बात करेंगे आदित्य L1 मिशन की। दोस्तों, आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने तैयार किया है। इस मिशन को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम आदित्य तक तो ठीक था, लेकिन L1 क्यों रखा गया? तो अभी बता देती हूँ। दरअसल L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाते हैं। इस जगह से उपग्रह लगातार सूर्य को देख सकता है। आदित्य L1 सूर्य की बाहरी परत, सौर हवाओं और सौर तूफानों का अध्ययन कर रहा है। सौर तूफान कई बार हमारे संचार तंत्र, इंटरनेट, GPS और बिजली व्यवस्था को तक प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इस मिशन से मिली जानकारी भविष्य में हमारी तकनीक और सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी। इस मिशन में कई वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं जो सूर्य की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। दोस्तों, भारत के लिए यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि अब हमारा देश केवल चांद और मंगल ही नहीं बल्कि सूर्य के रहस्यों को समझने में भी आगे बढ़ रहा है। यह मिशन दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है।

दोस्तों अब बात इसरो की। आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी हमारा इसरो दुनिया की सबसे विश्वसनीय अंतरिक्ष एजेंसियों में गिना जाता है। भारत ने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक भी विकसित कर लिया है। इसके अलावा मौसम, खेती, आपदा प्रबंधन और शिक्षा में भी अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग हम कर रहे हैं। अब भारत का अगला बड़ा सपना है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन की बात करें तो ये एक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। उन्हें लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई वाली लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। इस मिशन की अवधि लगभग 3 दिन की होगी। फिर उन्हें सुरक्षित समुद्र में लैंड कराया जाएगा। दोस्तों अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो स्वदेशी तकनीक से इंसान को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है।

दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल रॉकेट और उपग्रहों की कहानी नहीं है, ये कहानी है मेहनत, विज्ञान और आत्मविश्वास की। साइकिल से रॉकेट ले जाने से लेकर चांद पर तिरंगा फहराने तक का सफर हर भारतीय को प्रेरणा देता है। दोस्तों, ये तो था हमारा आज का क्रम। आपको कैसा लगा हमें पत्रों और ईमेल्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आइए अब आपको बता देते हैं कार्यक्रम के आरंभ में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बेंगलुरु। अब ये तो हुए आज के प्रश्नों के उत्तर। अब कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए अनुमति आपकी दोस्त प्रियंका वाणी को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युववाणी FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: ध्वनि तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावधानी डॉ आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉ कलीपट्टी रामासामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 196,000

0: फेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में हैं।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
5: आकाशवाणी खंडवा।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
5: आप सुनी रहे आज निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: सुनो ना।
6: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242।

0: 4-2, 4-2। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं?
2: आकाशवाणी खंडवा पर।

0: की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।
2: निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा पर तो सभी कुछ सुनने को मिलता है, एक से बढ़कर एक बेहतरीन कार्यक्रम और एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मी गाने। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
3: आप सुनी रहे आज निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
1: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
0: ब्रो ये फटा है। सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
2: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
0: वाओ, नया नोट मिलेगा?
7: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
8: कूल रहो।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। धार में बनेगा सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर मनाया गया गंगा दशहरा, और नौतपे के पहले दिन मिला जुला रहा मौसम, भोपाल विदिशा सीहोर सहित कई जिलों में रही भीषण गर्मी, उमरिया में बारिश से गिरा पारा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील,

0: रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत धार जिले में आयोजित गंगा दशहरा कार्यक्रम में सहभागिता कर जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार पुरातत्व और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके लिए उन्होंने यहां सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान बनाने का ऐलान किया। उन्होंने भोजशाला आंदोलन में शहीद हुए तीन बलिदानियों लक्ष्मण सिंह पंचघाटी, बन सिंह अमझेरा अंतर सिंह और अंतर सिंह के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
1: तो माँ वाग देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसलिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर।
0: कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऐतिहासिक देवी सागर तालाब के गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया और श्रमदान कर जल एवं जल संरचनाओं के संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में जल संरक्षण के व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा के अवसर पर आज सभी जिलों में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कुओं, नहरों, बावड़ियों और तालाबों की साफ सफाई, घाटों की स्वच्छता और पुराने बंद पड़े बोरवेल के पास रिचार्ज पिट का निर्माण कर जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर लोगों को प्रेरित किया। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण एवं सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। सीहोर के रेहटी स्थित नर्मदा के आंवली घाट पर जिला स्तरीय संरक्षण कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं नीमच, कटनी, खंडवा, खरगोन, अशोकनगर, छतरपुर, सतना, ग्वालियर, श्योपुर और रायसेन में भी जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश PS नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, NTA और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी पुस्तक अपनापन का विमोचन कल किया जाएगा। इस पुस्तक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के संबंधों और अनुभवों को साझा किया है। इसका विमोचन कल नई दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा करेंगे।
3: ये पुस्तक केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, वो सोच है जिसने भारत को बदल दिया। 26 मई को इस पुस्तक का लोकार्पण श्रीमान वेंकैया नायडू जी, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और आदरणीय देवगौड़ा जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, ये सुब्रमण्यम हाल पूसा में करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड विभिन्न नवाचारों से देश में सबसे आगे है। प्रदेश में वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन की गई हैं, जिसके लिए भारत सरकार से स्कॉच अवार्ड भी मिला है। ये पारदर्शी व्यवस्था पूरे देश के लिए उदाहरण बनी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड देश का श्रेष्ठ वक्फ बोर्ड है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज भोपाल के रविन्द्र भवन राज्य वक्फ बोर्ड के स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 850 बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। अब रुक करते हैं मौसम का। आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। यह सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो नौ दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है और गर्मी अपने चरम पर होती है। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया कि नौतपा की शुरुआत के पहले ही दिन नर्मदापुरम में असर देखने को मिला। यहां सुबह से ही तेज और तीखी धूप रही। भोपाल, विदिशा और सीहोर में भी

गर्मी से लोग परेशान दिखे। उधर उमरिया जिले में नवतपा की शुरुआत मौसम के बदले मिजाज से हुई। नवतपा के पहले ही दिन जिले में गलत चमक के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। अब समाचार संक्षेप में। शहडोल संभाग के शहडोल और उमरिया जिलों में 40 करोड़ की लागत से 3 डिग्री कॉलेज भवनों का निर्माण किया जाएगा। कटनी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विविध जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खरगोन के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रस्तावित नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने किया। जिला जेल अशोकनगर में आज बंदियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज श्योपुर में श्योपुर जिला स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैतूल में आज लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अधिकारियों और विभागीय निर्माण अधिकारियों को कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन ऐप के जरिए चली गिद्धों की गिनती पूरी हो गई है। 3 दिन की गिनती में 315 गिद्ध पाए गए। गुना में कलेक्टर ने आज जनगणना कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अधिकारियों का सम्मान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। धार में बनेगा सरस्वती लोग और भोज लोक संस्थान। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया ऐलान। प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर मना गंगा दशहरा। और नौतपे के पहले दिन मिला जुला रहा मौसम। भोपाल, विदिशा, सीहोर सहित कई जिलों में रही भीषण गर्मी। उमरिया में बारिश से गिरा पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

0: जब तक निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा ने सुनी लेती है, जब तक तमख चैनन ने मिलतो है, तो आप भी सुनी लो निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

हमारा सभी किसान भाई बहन का साथ छे आज आपकी बहन वाणी महोदय तो स्वीकार करो मरी राम राम। भाई बहनों आज से नौ तपा भी शुरू हुई गयो। नौ तपा ज्येष्ठ महीना का उ नौ दिन हो जेमा की गर्मी अपनी चरम पर हो। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करे तो शुरुआती नौ दिन में पृथ्वी पर सूर्य की किरण सीधी न तीखी या तेज पड़े न असो मान्यो जाए कि अगर ये नौ दिन न खूब तेज गर्मी पड़े तो मानसून बहुत अच्छा आवज, यानी कि नौ तपा की तेज तपिश आवण वाला कल की खुशहाली न हरियाली की गारंटी छे, क्योंकि तेज गर्मी से न तापमान में बढ़ोतरी होना सी समुद्र का पानी को वाष्पीकरण तेजी से होए, जेका सी घना बादल बनज न बारिश अच्छी होए। नौ तपा हमारा किसान भाई न का लेना एक उम्मीद को त्यौहार भी छे, क्योंकि उनका तो अपना खेत न फसल उत्पादन का लेना पानी की जरूरत ज़्यादा रहे। साथज भाई बहनोणी अभी अधिक मास भी चली रोए, अधिक मास ख मल मास न पुरुषोत्तम मास का नाम से भी जाने जाए। अधिक मास में पूजा पाठ न दान को विशेष महत्व रहे न असो कहो जाए कि अधिक मास में

करो गयो दान हमका कई गुना फल देज। साथज भाई बहन होनी अधिक मास हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में 1 बार आवज। इना महीना में भगवान विष्णु की आराधना करी जाए। भाई बहनोणी ने असो मान्यो जाए कि अधिक मास में कर्या गया जप तप व्रत न दान को फल हमका सामान्य दिन में कर्या गया दान सी कई गुना अधिक मिलेज। साथज अधिक मास में किसी भी तरह क्या जैसा कि शादी सगई गृह प्रवेश मुंडन या किसी भी नया कारोबार न धंधा की शुरुआत न मांगलिक कार्य नहीं कर जाता है। इस बार पुरुषोत्तम मास 17 मई से प्रारंभ हुई गये न ये 15 जून तक रहेगा। इना महीना में अन्न वस्त्र न दीपदान ख सबसे उत्तम दान मान्य गये। जरूरतमंद लोग न ख भोजन न अनाज को दान करनु चाहिए। साथज मौसम का अनुसार गरीब नख कपड़ा न को दान करनु चाहिए। दीपदान में मंदिर या घर का पूजा घर में अखंड दीप भी जलाया जाए। साथज गाय न की सेवा न गाय नख हरो चारो गुड़ रोटी खिलौनों भी अधिक फलदायी माने जाए। साथज तिथि का अनुसार भी अलग अलग तिथि न पर अलग अलग चीज न को दान करने को महत्व छे। तो हमारी बहन न भी इना अधिक मास में अपनी सामर्थ्य का अनुसार गरीब नख दान दई न पुण्य फल प्राप्त करी रही होगा न। भाई बहनोणी ई तो थी आपकी न हमारी थोड़ी सी बातचीत न अव सुना यो निमाड़ी लोकगीत जेका गायो साधना उपाध्याय न साथी न।

भाई बिन्नोनी, अब समय छे आपसे आज को खेती किसानी से जुड़े प्रश्न पूछने को। तो आज को हमारो प्रश्न छे, हरी खाद का उपयोग से भूमि का काई लाभ होए? न इना प्रश्न को उत्तर तो हम आपको जरूर बतावांगा, लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम का अंत में तम तक बने रहो हमारा साथ, न कार्यक्रम को आनंद लो। भाई बिन्नोनी, स्वस्थ शरीर का लेना जीना प्रकार से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व न की जरूरत रहे, उनाज प्रकार से अगर हमारी फसल न कभी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिले तो हमारा किसान भाई गुणवत्तापूर्ण फसल तो ले सके, साथ ही अच्छो उत्पादन भी ले सके। न इस सब का लेना पानी, खाद, उर्वरक न अच्छा बीज न की तो जरूरत पड़े, मगर इस सब न सी जरूरी एक अरु काम छे, न ऊछे अपना खेत न की मिट्टी की जाँच कराणु, न ई काम हर किसान भाई नख दुई से तीन साल में एक बार जरूर कराणु चाहिए। मिट्टी परीक्षण कराने से किसान भाई नख ई मालूम हुई जाए कि उनकी मिट्टी में किना पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी छे या अधिकता छे, तो वो का हिसाब जरूरत का हिसाब से अपना खेत में फसल लगाई सके। साथ ही भाई बहनोनी, मिट्टी परीक्षण का आधार पर हम अपनी फसल न पर आवश्यकता अनुसार उर्वरक न को प्रयोग कर सकान, जेका सी ऐसी भूमि न जहाँ पर उर्वरक न की जरूरत नहीं रहती है वहाँ पर उर्वरक न को प्रयोग नहीं करी, न हम उर्वरक न की भी बचत कर सकान। भाई बहनोनी, मिट्टी परीक्षण का लेना मिट्टी को नमूना लेते समय कुछ बात न को ध्यान रखना चाहिए, जेका से कि हमको हमारा खेत की मिट्टी की सटीक जानकारी मिली सका। मिट्टी को नमूनों ऐसी जगह से लेनु चाहिए जी की पूरा खेत को प्रतिनिधित्व करी सका। नमूनों लेना का लेना एक हेक्टर में 15 से 20 अलग अलग जगह न को चुनाव करनु चाहिए, न चिन्हित जगह न का वहाँ से घास फूस कंकड़ पत्थर नख साफ करी देनु चाहिए, न हर निशान वाली जगह पर खुरपी या फावड़ा सी वी आकार की 15 सेंटीमीटर गहरो गड्ढो करी लेनु चाहिए, न गड्ढा का ऊपर की फालतू मिट्टी हटाई न खुरपी की सहायता से मिट्टी की दीवार से एक अंगुली मोटी मिट्टी की परत निकाली न साफ सुथरा बर्तन में रखी न सभी निशानदेही जगह नख मिट्टी मिलाई देनु चाहिए, न उन्हीं इकट्ठी करेल मिट्टी का चार भाग करी न एक भाग पॉलीथीन में रखी न मिट्टी परीक्षण का लेना दई सकान। साथ ही भाई बहनोनी, मिट्टी को नमूनों वर्षा ऋतु में या सिंचाई का ठीक बाद में नहीं लेनु चाहिए, गीली मिट्टी को नमूनों नहीं लेनु चाहिए, न ऊंचाई वाली जगह को अलग से नमूनों लेनु चाहिए, खेत में फसल काटने का तुरंत बाद या खाद उर्वरक देने का तुरंत बाद नमूनों नहीं लेनु चाहिए। साथ ही भाई बहनोनी, नमूनों लेना मेड़, नहर, नाला का पास, पेड़ की छाया वाला क्षेत्र, न खाद का गड्ढा का पास की जगह को चुनाव नहीं करना चाहिए। साथ ही भाई बहनोनी, अब तो हमारा किसान भाई नख मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट भी उनका अपना मोबाइल फोन पर डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकाए। भाई बहनोनी, अब सुना एक अरुण निमाड़ी लोकगीत जेख गायो रमेश चंद्र यादव न साथी न ना।

0: भाई विंडोनी अब सुना पुनः प्रसारित भेटवार्ता जेको विषय छे संरक्षित खेती। जानकारी दे रहा डॉक्टर दीपक हरि रानाडे।
1: आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कृषि महाविद्यालय खंडवा के डीन डॉक्टर दीपक हरि रानाडे जी। रानाडे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम।
1: मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल टिकाऊ खाद्य उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, तो आजकल संरक्षण कृषि पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो संरक्षण कृषि क्या है इसके बारे में बताइए।
2: जी मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता में कमी के कारण आज विश्व के कई देश संरक्षण खेती को बड़े व्यापक स्तर पर अपना रहे हैं। वर्तमान में विश्व में लगभग 205 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर संरक्षित खेती को की जा रही है। संरक्षित खेती करने वाले देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील और अर्जेंटीना प्रमुख है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य खेत की मिट्टी की न्यूनतम जुताई करने पर आधारित है। मृदा सतह को फसल अवशेषों या दूसरे किसी वनस्पति आवरणों से ढककर रखा जाए तथा फसल चक्र पद्धति को अपनाया जाए। इससे फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मृदा, पानी, पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का संरक्षण, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। यह कृषि में टिकाऊपन लाने के लिए बहुत ही जरूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भविष्य में इस तरह की खेती को ही अपनाना ही होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अच्छे से जीवन निर्वाह कर सकें। अतः किसान भाइयों, इस वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर अधिक फसल उत्पादन के साथ साथ ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं।
1: संरक्षण कृषि के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
2: जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज देश की कृषि कई तरह की समस्याओं से ग्रसित है। इनमें फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में निरंतर गिरावट, मृदा में पोषक तत्वों की कमी और भूजल स्तर में निरंतर कमी इत्यादि प्रमुख है। इसके साथ ही मृदा, जल और वायु में कई तरह के विषैले पदार्थों की उपस्थिति भी चिंता का कारण है। फसल उत्पादन, मृदा की उर्वरा शक्ति एवं पर्यावरण पर आधुनिक कृषि के विपरीत प्रभाव के कारण संसाधनों का अत्यधिक अंधाधुंध और अनुचित दोहन ज्यादा समय तक नहीं चल सकता है। इससे आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है और इन समस्याओं को ध्यान में रखकर हमें ऐसे संसाधन संरक्षण संबंधी तकनीकों के बारे में सोचना होगा जो अधिक तथा टिकाऊ होने के साथ साथ फसल उत्पादन एवं लाभ के साथ संसाधनों की गुणवत्ता को भी बनाए रखें ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न एवं अच्छा वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। पिछले लगभग 1.5 दशक से देश में संसाधन संरक्षण संबंधी कई तकनीक विकसित की गई है। इनके द्वारा फसल उत्पादन बढ़ने के साथ साथ संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि संरक्षण कृषि ऐसी ही एक प्रमुख तकनीक है।
1: रानाडे जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि संरक्षण कृषि की कौन कौन सी महत्वपूर्ण तकनीकें होती है इसके बारे में बताइए।
2: देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संरक्षण कृषि की महत्वपूर्ण तकनीकें हैं लेजर लेवलिंग तकनीक, दूसरा है फसल अवशेष शून्य जुताई, तीसरा है फसल अवशेष युक्त स्थायी मेड़ विधि। ये तीन प्रकार की महत्वपूर्ण तकनीक है जो संरक्षण कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक होती है।
1: लेजर लेवलिंग तकनीक के बारे में बताइए आप हमें।
2: लेजर लेवलिंग किसी संसाधन संरक्षण संबंधी तकनीक की सफलता एवं फसल की उत्पादकता खेत के समतल होने पर बहुत ही निर्भर करती है। ज़्यादातर के समतल होने चाहिए और समतल होने से यह होता है कि इसमें एक यह वैज्ञानिक विधि है और इसमें एक विशेष उपकरण द्वारा खेत की मिट्टी को पूरी तरह से समतल किया जाता है। समतल भूमि पर फसल की बुआई का सबसे बड़ा

0: लाभ पानी की बचत व अधिक फसल उत्पादकता है। सिंचाई का पानी संपूर्ण खेत में समान मात्रा में व कम समय में फैल जाता है। धान की फसल के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी तकनीक है। इस तकनीक के उपयोग से सिंचाई जल में 25-30% की बचत होती है। देखिए, अगर लेजर लेवलिंग से हम खेत को ज़्यादा समतल करेंगे तो पानी की हम खासतौर से सिंचाई जल की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि लेजर लेवलिंग मशीन की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। किसानों के बीच यह मशीन कंप्यूटर के नाम से प्रचलित है। यह मशीन काफ़ी महंगी है, परंतु छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए जरूरत के पूरा करने के लिए आसानी से किराए पर उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे मध्य प्रदेश में भी कस्टम हायरिंग सेटअप के माध्यम से लेजर लेवलर को प्रोवाइड किया जा रहा है, किसानों को दिया जा रहा है, जिससे किसान अपने खेत को समतल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा समतल बनाकर सिंचाई जल का समुचित रूप से खेतों में विस्तार कर सकते हैं, उनको फैला सकते हैं और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बचत कर सकते हैं।
1: रानाडे जी, आपने लेजर लेवलिंग तकनीक के बारे में हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फसल अवशेष युक्त स्थायी मेड़ विधि क्या है।
0: देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेजर लेवलिंग के अलावा
1: फसल अवशेष शून्य जुताई के क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में बताइए।
0: देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि संरक्षण खेती की प्रमुख जो विधियां होती है उसमें लेजर लेवलिंग के अलावा फसल अवशेष युक्त शून्य जुताई भी महत्वपूर्ण तकनीक है। और इस तकनीक में फसलों की बुआई बिना जुताई किए हुए खेतों में फसल अवशेष के साथ एक विशेष प्रकार की जीरो टिल हैप्पी सीड ड्रिल मशीन द्वारा की जाती है। इसके लिए हैप्पी सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ये भी कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से हमारे किसानों को प्रोवाइड की जा रही है, दी जा रही है। और इस मशीन द्वारा जहाँ बीज की बुआई करनी हो उसी जगह से मिट्टी को न्यूनतम खोदते हुए कुंड बना दिए जाते हैं तथा दो पंक्तियों के बीच की जगह बिना जुती ही रहती है और बुआई के समय ही आवश्यक उर्वरकों की मात्रा बीज के नीचे डाल दी जाती है। और इस विधि से रबी फसलों जैसे गेहूं, चना, सरसों, मसूर, जौ और अलसी की बुआई बहुत ही आसानी से की जा सकती है। इससे फसलों की बुआई हेतु भूमि की तैयारी में लगने वाले समय व संसाधनों की बचत की जा सकती है। और इस तकनीक द्वारा बुआई करने पर देरी से बोई गई फसलों में होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। कई अनुसंधान किए गए हैं और इन प्रयोगों में यह ज्ञात हुआ है कि फसल अवशेष के साथ बिना जुताई द्वारा बोई गई फसलों की पैदावार में 5-10% की वृद्धि पाई जाती है। इसके साथ ही बिना जुताई बुआई करने में लागत कम आती है। आम किसान बुआई के पूर्व खेत की 3-4 बार जुताई करते हैं, जिसके कारण होने वाला खर्च बच जाता है। इसके साथ ही ट्रैक्टर के रखरखाव पर भी कम लागत आती है। इससे रबी फसलों की बुआई में 6-7 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर का खर्च बचाया जा सकता है। इस तकनीक से बुआई करने पर पानी की मात्रा भी कम लगती है। एक तो पलेवा यानी बुआई पूर्व सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, दूसरा बाद में भी 1-2 सेंटीमीटर प्रति सिंचाई पानी कम लगता है। इस प्रकार मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ और उस पर निर्भर लाभकारी सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ये परंपरागत बुआई में खेतों की बार बार जुताई करने पर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में भी यह तकनीक सार्थक मानी जाती है।
1: फसल अवशेष शून्य जुताई के फायदे के बारे में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसके साथ ही मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी कि फसल अवशेष युक्त स्थायी मेड़ विधि क्या है।
0: देखिए, फसल अवशेष युक्त विधाई स्थायी मेड़ विधि में फसलों की बुआई मेड़ों पर करने के लिए एक विशेष यंत्र का तैयार किया गया है। इस तकनीक में दो तरह की मेड़े बनाई जाती है, चौड़ी मेड़ जिसकी चौड़ाई 100-110 सेंटीमीटर एवं सकरी मेड़ जिसकी चौड़ाई 35-40 सेंटीमीटर रखी जाती है। बुआई मेड़ों पर और कुंडों में फसल के अनुसार की जा सकती है। गेहूं के लिए सकरी मेड़ों पर 2-3 पंक्तियां एवं चौड़ी कैरियों पर 5-6 पंक्तियों की बुआई की जा सकती है, जबकि सोयाबीन, सरसों, चना, मूंग की सकरी कैरियों पर 2 पंक्तियों की बुआई काफी होती है। यह तकनीक खेतों की भली भांति जुताई करने के बाद या फिर पिछली फसल के लिए बनाई गई कैरियों पर बिना जुताई के भी अपनाई जा सकती है। इस विधि से बुआई करने के कई लाभ हैं, जैसे वर्षा ऋतु में खेतों में ज्यादा पानी खड़ा होने से मेड़ों पर उगे पौधे ज्यादा सुरक्षित होते हैं, अनावश्यक पानी की नालियों के माध्यम से निकाला जा सकता है, फसलों की सिंचाई करने पर पानी की मात्रा 20-30% तक कम लगती है, इसके साथ ही प्रति इकाई पानी की उत्पादकता भी बढ़ती है। इस तकनीक द्वारा फसल उत्पादन में यह भी देखा गया है कि बीज और खाद की मात्रा 15-20% कम लगती है, क्योंकि इनका प्रयोग सिर्फ मेड़ों पर किया जाता है। इस विधि में मेड़ों पर खरपतवार भी कम आते हैं। इसका कारण यह है कि मेड़ों पर फसलों के पौधों की संख्या ज्यादा होती है, इससे खरपतवारों को पनपने का मौका ही नहीं मिलता। नालियों

0: में ज्यादा खरपतवार आते हैं क्योंकि फसलों की प्रारंभिक अवस्थाओं में उनके उगने के लिए पर्याप्त जगह होती है। इनकी रोकथाम हाथ से चलाने वाले अथवा ट्रैक्टर चलित यंत्रों द्वारा आसानी से की जा सकती है। इस प्रकार मेड़ों पर बुआई करने से संसाधनों का कम प्रयोग होने के साथ साथ पैदावार भी 10 से 15% ज्यादा या फिर समतल जमीन पर बुआई करने के बराबर ही मिलती है। कपास गेहूं फसल चक्र में शून्य जुताई और चौड़ी क्यारी में बुआई बहुत सार्थक पाई गई है। यदि फसलों के अवशेषों को मृदा की सतह पर बिछा दिया जाए तो यह तकनीक और भी ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुई है। इसका मृदा नरमी, कार्बन की मात्रा व तापमान पर अनुकूल प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही खरपतवारों की रोकथाम में भी सहायता मिलती है। संरक्षण खेती की तकनीकों द्वारा फसलों की उपज और शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी आकी गई है और इसके साथ साथ सिंचाई जल की उत्पादक दक्षता में भी सुधार पाया।
1: रानडे जी, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिना जुताई वाली खेती में क्या क्या सावधानियां हमारे किसान भाइयों को रखनी पड़ती है और इसमें कौन कौन सी कठिनाइयां आती है?
0: देखिए, इसमें हमको बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है। बिना जुताई वाली खेतों में कुछ सावधानियां और मुश्किलें भी है, जैसे आपने कठिनाइयों की बात की। एक तो बुआई के समय मृदा में पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि मृदा और बीज का संपर्क अच्छी तरीके से हो जाए। दूसरा, बुआई के समय ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है कि कहीं सीड ड्रिल की पाइपें बंद ना हो जाए। यद्यपि सीड ड्रिल की पाइपें पारदर्शी होती है तो उसमें बीज गिरता हुआ स्पष्ट नजर आता है। खरपतवारों के नियंत्रण में भी ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इसके लिए बुआई से पहले पैराक्वाट अथवा ग्लाइफोसेट नामक खरपतवाशी का उपयोग करना चाहिए, जिससे पहले से उगे हुए सारे खरपतवार नष्ट हो जाएं। कुछ भारी मृदाओं में पौधों की जड़ों की वृद्धि कम हो सकती है, इसके लिए मृदा पर फसल अवशेषों या अन्य वनस्पति पदार्थों की परत डालने से पौधों की जड़ों के विकास के लिए अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मेड़ों पर बुआई करने के लिए कुछ सावधानियों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए खेत पूरी तरह से समतल होना चाहिए। अगर अच्छी जुताई के साथ मेड़ों पर बुआई करनी हो तो मृदा पूरी तरह से भुरभुरी होनी चाहिए। मेड़ों पर बुआई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृदा में उचित नमी होनी चाहिए, अन्यथा नमी की कमी में बीजों का जमाव ठीक से नहीं हो पाता। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि संरक्षण खेती में विभिन्न फसल प्रणालियां अपनाई जाती है और एक आकलन किया गया है कि संरक्षण खेती के अंतर्गत कपास गेहूं फसल चक्र में अरहर गेहूं और मक्का गेहूं फसल चक्रों की अपेक्षा अधिक उत्पादकता मिलती है। और साथ ही फसल अवशेषों के साथ मेड़ पर बुआई करना समतल बुआई की अपेक्षा बेहतर है। इसके साथ ही ये तीनों फसल प्रणालियों के अंतर्गत फसल अवशेषों के साथ मेड़ों पर बुआई करने से अधिक उत्पादकता मिलती है। और एक अध्ययन के अनुसार ये पाया गया है कि कपास गेहूं फसल प्रणाली धान गेहूं प्रणाली की

न्यूनतम भाव रहा 6,001 रुपया, न अधिकतम भाव रहा 7,591 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना का न्यूनतम भाव रहा 6,020 रुपया, न अधिकतम भाव रहा 7,625 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों का भाव रहा 6,511 रुपया प्रति क्विंटल। लोकवन गेहूं का भाव रहा 2,671 रुपया प्रति क्विंटल। अब मौसम की जानकारी दे देवान। आज सूर्योदय प्रातः 5:41 पर हुयो, न सूर्यास्त शाम 7 बजे हुयो, न आज का दिन को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। भाई बहनोनी अब सुना जियो निमाड़ी लोकगीत, जेखा गायोज गंगाबाई मसानी न साथी नना।

भाई बहनोनी, अब समय छे कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछा गया प्रश्न को उत्तर बताने को। तो आज को हमारो प्रश्न थो, हरी खाद का उपयोग से भूमि का काई लाभ होए? ने एक उत्तर छे, हरी खाद का उपयोग से मिट्टी की जैविक क्रिया में तेजी आवे, न लाभदायक जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होए। न इना उत्तर का साथ ज हमारा कार्यक्रम को समय भी यहाँ पूरा होए। तो आज्ञा देव आपकी बहन वाणी महोदय का राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का पहला भाग सुनवा रहे हैं। निर्देशन दीनानाथ का है।

0: विक्रम,
1: ऐसे ही मैंने सोचा पूछ लूं, आज शाम को तो आ रहे हो ना?
0: कहाँ?
1: क्यों भाई, आज कमला के यहाँ?
0: कमला के यहाँ? वहाँ क्या है भाई?
1: आज कमला के यहाँ रिसेप्शन है ना?
0: मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो कोई इनविटेशन आया नहीं। व्हाट्स द ओकेजन?
1: अरे उसका भाई इंग्लैंड से मेम ब्याह कर लाया है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है।
0: होगा भाई, मुझे नहीं मालूम।
1: चलो मैंने बता दिया, काफी है, अब आ जाओ। बहुत से पुराने यार दोस्त मिलेंगे, खूब हंगामा रहेगा। 6:30 बजे के बाद किसी वक्त भी।
0: मुश्किल है यार।
1: फॉर्मल इनविटेशन के बिना जाना शान के खिलाफ है क्या?
0: क्या बात करते हो यार, कमला के यहाँ पार्टी हो तो फॉर्मेलिटी कैसी?
1: मुझे यकीन है उसने तुम्हें इनविटेशन कार्ड जरूर भेजा होगा, हो सकता है डाक में कहीं रह गया।
0: नहीं नहीं, ये बात नहीं, इनविटेशन की ऐसी कोई बात नहीं। यूं भी कमला से मिले कितनी देर हो गई है मुझे, कम से कम 6 महीने तो हो गए होंगे, हो सकता है साल ही गुजर चुका हो। मैं खुद कई बार सोच चुका हूँ कि चल के उसे मिलाऊं, लेकिन बस वक्त ही नहीं मिलता यार। देखो ना, 6 बज भी चुके हैं और मैं अभी तक ऑफिस में ही बैठा हूँ।
1: लेकिन वहाँ तो 6:30 बजे के बाद पहुँचना है यार।
0: मैं जरूर आ जाता शाम, अगर तुम मुझे सुबह फोन कर देते। अब शाम को मुझे एक और पार्टी में जाना है, वहाँ भी बस शक्ल दिखा के भागूंगा। 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है मुझे, हेड ऑफिस से मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है, फिर जाने उनके साथ कितनी देर लग जाए। आई एम रियली वेरी सॉरी।
1: देख लो वक्त मिले तो आ जाना।
0: भाई मुश्किल ही है, फिर भी कोशिश करूंगा, मगर प्लीज कमला से कुछ ना कहना।
1: नहीं नहीं,
0: थैंक्स फॉर कॉलिंग,
1: बाय बाय।
0: बाय बाय। क्या लिखा था?

0: copy of which is
1: being enclosed herewith for your ready reference. Thanking you, yours faithfully, etc., etc.
0: Next, sir?
1: नहीं बस, बाकी ये खत कल सुबह आकर करेंगे. Thank you. बस जाकर इनको जल्द से टाइप कर लाओ, मुझे जाना है.
0: Yes, sir. In a minute.
1: सुनो, आज की डाक से मेरा कोई पर्सनल खत तो नहीं आया?
0: No, sir. डाक तो मैंने सब आपको दे दी थी. मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, शायद मेरे
1: नहीं, नहीं नहीं नहीं होगा. मैं कोई खास खत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. चलो देख लो शाम की डाक में शायद.
0: यस सर.
1: विक्रम. यस सर. जी हाँ जी हाँ, मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा. जी हाँ जी हाँ, आई शैल एक्सप्लेन टू हिम सर. यस सर. वेरी वेल सर.
2: सर
1: कागज और बैग मेरी गाड़ी में रख दो.
2: यस सर.
0: आई एम सॉरी सर, आपका कोई पर्सनल लेटर नहीं है.
1: ओह इट्स ऑल राइट. खत टाइप हो गया है?
0: यस सर.
1: ये लो, बाकी खत ऐसे ही यहीं छोड़ दो, सुबह डिक्टेट करवा दूंगा.
0: राइट सर.
1: राइट
3: सर. सर आप अपना पेन भूल गए थे.
4: ओह थैंक यू. मैं ग्रीन पार्क की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँ?
3: नो थैंक यू सर, मुझे अभी थोड़ा काम और करना है.
4: अच्छी बात है.
3: गुड नाइट सर.
4: गुड नाइट.
5: आज कमला के यहाँ रिसेप्शन है भाई. अरे उसका भाई इंग्लैंड से मेम ब्याह कर लाया है. तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है. तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है. तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है.
6: विक्रम तुम इस वक्त यहाँ कैसे आन पहुँचे?
4: क्यों कमला, मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था क्या?
6: लेकिन मेरा आज यहाँ आने का बिल्कुल इरादा नहीं.
4: तो फिर तुम यहाँ कैसे आई?
6: कॉलेज से घर पहुँची तो बहुत सोना सोना सा लगा, सोचा एक आध ऐसे तैयार कर लूँ. कॉफी निकाल कर बैठी तो अचानक याद आया कल विनीता का बर्थडे है. तुम जानो ये मॉडर्न लड़कियाँ बर्थडे पे प्रेजेंट नहीं दिया जाए तो अनकल्चर्ड की डिग्री दे डालती.
4: तो तुम विनीता के लिए प्रेजेंट खरीदने निकली?
6: ढूंढने निकली थी प्रेजेंट, मिल गए तो अब मिल ही गए हो तो कॉफी के लिए तो पूछ लूं.
4: हाँ हाँ चलो. कहाँ चले?
6: सुना है ग्रीन लाइट में कॉफी के साथ साथ म्यूजिक मुफ्त मिलता है.
4: जी नहीं, म्यूजिक की कीमत वो कॉफी में ही लगा लेते हैं.
6: बड़े संजूस होते जा रहे हो. हाँ भाई मैं तुम्हारी वो तो नहीं हूँ ना. अच्छा चलो कॉफी के पैसे अपने अपने.
4: मुझे डायलॉग सुनने का बहुत शौक है. क्या तुम चाहती हो मैं रोज रोज दिल पे हाथ रखकर आंखों में आंखें डालकर तुम्हारी आंखों की तारीफ करूं?
6: तो तुम क्या करोगे, बस कदर ही कर लो, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा. फिर चलें ग्रीन लाइट.
4: चलो ना, लेकिन पहले अपना प्रेजेंट तो खरीद लो, दुकानें बंद हो जाएंगी.
6: प्रेजेंट खरीदने का आइडिया मैंने फिलहाल ड्रॉप कर दिया.
4: पैसे कम पड़ गए होंगे.
6: पैसे कम पड़ गए होंगे, आज ही पॉकेट मनी की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली है.
4: फिर तो ग्रीन लाइट का पूरा बिल तुम्हें ही देना पड़ेगा.
6: तुम्हें शर्म नहीं आएगी?
4: बिल्कुल नहीं, तुमसे भला मुझे क्या शर्म आएगी?
6: मुझसे नहीं, वेटर से तो आएगी.
4: और वहाँ तो बिल मैं ही पे करूंगा, तुम पैसे मुझे पहले से ही पकड़ा देना.
6: बड़े ठीक.
4: देख लो तुम कॉलेज से सीधी घर चली गई, ये भी ना सोचा कि मैं कहाँ मारा मारा फिरूंगा. फिर भी तुम्हें ढूंढ लिया.
6: जी हाँ, पूरे 10 मिनट गेट पर इंतजार किया था जाने से पहले.
4: 10 मिनट क्या बहुत होते हैं?
6: कभी कभी ऐसा लगता है जैसे 10 बरस बीत गए. फिर तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे घर पहुंचकर सुना सुना क्यों लग रहा था? इतनी सटल बातें अगर तुम समझ सकते होते तो अपना बेड़ा न पार करता. चलो हमारी
4: I'm sorry, कमला, आज का प्रैक्टिकल बहुत लंबा था लेकिन खत्म करते ही तुम्हें ढूंढने निकल खड़ा हुआ.
6: घर गए थे?
4: ना ना ना ना, मेरे दिल ने कहा तुम घर पर नहीं होगी बल्कि जरूर कनॉट प्लेस में शॉपिंग करती हुई मिलोगी.
6: दिल ना हुआ रडार हो गया.
4: जब मिलने की ख्वाहिश हो तो दिल की आवाज रडार से भी बढ़ के काम करती है. देख लो तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, मुझे कुदरती तौर पर खुद ब खुद मालूम हो जाता है कि तुम कहाँ हो. तुम्हारी सांसों की लहरें मेरे कदमों को खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच लाती हैं.
6: सुनो ये आजकल के मॉडर्न राइटर्स ने कोई नई तरह के डायलॉग नहीं लिखे?
4: खुद ही तुम कहती हो कि मैं.
6: अब चलकर कॉफी पिलाओ, कितनी देर हो गई है. माँ ने कहा था अंधेरा होने से पहले घर लौट.
4: मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इन अम्माओं को अपनी बेटियों की इतनी फिक्र क्यों खाई रहती है. अगर बाहर से लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा?
6: तुम्हारी तरह के भूतों का

0: खतरा रहता है ना, ना मिले तो सूना सूना लगता है, मिल जाए तो ऐसा जादू करते हैं कि घर बार फूल जाता है। फिर माँ बेचारी क्या करे, बेटी तो जाने उनके लिए पराया धन है, जिसे उसके मालिक के हवाले किए बिना उनको चैन नहीं पड़ता।
1: तुम किसकी अमानत हो?
0: तुम्हें नहीं मालूम?
1: तुम बता दो।
0: मुझे भी नहीं मालूम।
1: ये कैसे हो सकता है?
0: कहा ना, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। कहा है तुम्हारा ग्रीन लाइट?
1: वो रहा,
0: चलो चलकर कॉफी पिए।
1: तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
0: कहा ना, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम।
1: तुम्हारी मर्जी।
0: सुनो, इनके यहाँ वो गाना है।
1: कौन सा?
0: छोड़ो, तुम्हें गाना सुनकर भी क्या समझ आएगी?
1: बस छोड़ गई मैदान।
0: क्या मतलब?
1: एक सवाल का सीधा जवाब देते हुए घबरा क्यों गई?
0: Shut up.
2: गुड इवनिंग अंकल।
3: ओ गुड इवनिंग विक्रम।
2: हेलो आंटी।
0: अच्छे हो विक्की?
2: आप दोनों को कविता के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आंटी।
3: अरे भाई, ये

0: बहुत बहुत बधाई आंटी।
1: अरे भाई, ये बधाई वधाई तो खुद उसी को जाकर दो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है।
2: किरी बहुत नाराज है तुमसे, सब लोग तो कभी के आ चुके हैं और तुम इतना लेट आए हो। वो बिल्कुल ऑफ मूड बैठी है।
0: आप फिक्र न कीजिए आंटी, देखिए अभी जाकर उसका मूड बिल्कुल ठीक किए देता हूँ। अरे कहाँ है सब लोग?
2: पिछले लॉन में है, डाइनिंग रूम में से होकर निकल जाओ, मैं चलूं आपके
0: साथ। नहीं आंटी, आप बैठे रहिए, आप फिक्र न कीजिए, मैं सब अभी ठीक किए देता हूँ।
1: ही इज अ स्मार्ट बॉय।
2: बहुत, देखो ना, सिर्फ 4 साल हुए हैं सर्विस करते हुए और अपनी कार खरीद ली है। अपनी फर्म की लोकल ब्रांच में नंबर 2 है, 2 साल तक नंबर 1 हो जाएगा। किवी बता रही थी सब मिलाकर 1400 मिलते हैं और साल 2 साल बाद तो।
1: अरे भाई, मैं उसकी नेचर की बात कर रहा
2: हूँ। हाँ, अच्छा है। हाथ में प्रेजेंट का डिब्बा बहुत बड़ा था, ग्रेट स्टोर का लेबल लगा हुआ था।
1: मैंने गौर नहीं किया।
2: ये तो ग्रेट स्टोर वाले तो बहुत ही चोर है, हर चीज के दुगने तिगने दाम लगाते हैं। मगर ये जरूर है, जो वैरायटी इनके यहाँ मिलती है ना, आप अखबार पढ़ रहे हैं क्या?
1: देख रहा हूँ।
2: कीवी से लकी गर्ल।

यादों की परछाइयां, सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का अभी आपने पहला भाग सुना। निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का दूसरा भाग सुनिएगा कल इसी समय हवा महल कार्यक्रम में।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो

0: सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मीट ब्रॉस और अरिजीत सिंह की आवाजों में वन नाइट स्टैंड फिल्म के गाने से। यह है फिल्म का नाम वन नाइट स्टैंड। संगीत तैयार किया है मीट ब्रॉस ने, बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया गीत फिल्म है साया। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है MM करीम ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम में

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए सैयद कादरी का लिखा गीत प्रीतम का संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज है के की।

खामोशी द म्यूजिकल। लीजिए इस फिल्म में सुनिए कविता कृष्णमूर्ति को, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

अभी आपने कविता कृष्णमूर्ति को खामोशी का म्यूजिकल में सुना। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आज नचले फिल्म से है। आवाज दे रहे हैं राहत फतेह अली खां, संगीत तैयार किया है सलीम सुलेमान ने और बोल हैं जयदीप सैनी के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त

0: की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों धन उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: फ्यूल फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है, इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
4: Several key agreements were signed.
5: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है। विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए, इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
6: Against the assessment of
2: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
6: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286

के पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन

0: राधिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आरजू फिल्म के गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

दूसरा आदमी, अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया और जयदेव का संगीतबद्ध किया तुम्हारे लिए फिल्म का गीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता से लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने दिए।

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के हुस्न लाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे। जब

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में

जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारे लाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारे लाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारे लाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को 4 फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका नहीं मिला।

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन, राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

तक रहोगे दूर कि दिल की वादियों से आ रही है पुकार, हवाओं के संग संग चल रही हैं फिजाएं भी, लगा रही है गुहार।

लेकर के हाथों में हाथ जो चल पड़े हैं हम मोहब्बत की राहों में। सपने वो हसीन लाखों सपने अब आ गए हैं निगाहों में।

अब इतना भी न तरसाओ कि तुम्हारे नाजो अंदाज की तुम्हें कसम है। खोल दो राज और बोल दो जुबां से कि हम ही तुम्हारे सनम है।

ये हो जाए खूबसूरत और ये मुलाकात बन जाए मोहब्बत। आती है तो आ जाए मौत बेशक कि अब हम ही है तेरे दिल की जरूरत।

0: में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66.